जय हिंद। आप सुन रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। अब हमारी आज की सभा शुरू होती है। आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। आइए मिलकर अपने दिन की शुरुआत करें आजाद हिंद गान के साथ।

0: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश लें स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: बीए ऑनर्स हिंदी, बीए ऑनर्स इंग्लिश, एमए हिंदी, एमए इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा एआई आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, यूजीसी नेट, जेआरएफ तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी। मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। No more call now 9639010313।
3: यू ही मारते रहे।

0: दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
1: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 24 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
2: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 24 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
3: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
4: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
3: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
5: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
6: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

बाद हमारा जीवन आरंभ होता है। और ऐसे समय पर कवि ने एक चेतावनी दी है, एक महान शिक्षा दी, इसकी ओर ध्यान दें।

ये भजन आप राग देश में सुन रहे हैं, कुछ और रागों की इसमें छाया है, प्रस्तुत कर रहा हूं।

जय हिंद। सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर आपका स्वागत है। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और ये स्पेशल कार्यक्रम है। और आज के इस स्पेशल कार्यक्रम में हम बात करेंगे हमारे पुरखों की, यानी हमारे पितरों की। दोस्तों, 16 दिन के ये स्पेशल जो दिन होते हैं, यहाँ पर एक ऐसी ऊर्जा होती है जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, यानी पितृ पक्ष को मनाते हैं। पितृ ऋण से मुक्ति का माध्यम भी ये बनते हैं। क्या होते हैं हमारे पितृ, हमारे पूर्वजों के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं और किस प्रकार हमें अपने पूर्वजों को याद करना चाहिए, आज इसी बारे में चर्चा करेंगे।

गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आपका फिर से स्वागत है सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पितृ पक्ष में हमको याद रखनी चाहिए, क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है। इसीलिए मैंने आपको पहले भी जैसे बताया था, मैं फिर से एक बार याद दिलाना चाहता हूं कि श्राद्ध कर्म में बर्तनों का विशेष महत्व दिया गया है, बताया गया है। देखिए, अगर आपके पास बजट है या आपके पास है तो सोने चांदी और कांसे और तांबे के पात्र या बर्तन सबसे उत्तम माने गए हैं। आप इस प्रकार के बर्तनों में ही जो है अपने श्राद्ध का जो भोजन है या जो पूजन है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपका इनके लिए बजट है या आपके पास ये अवेलेबल रहते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो ऐसे में आप लकड़ी से बने बर्तन, पत्तल या दोने फिर उनका इस्तेमाल करें। केले के पत्ते पर बिल्कुल भी श्राद्ध निषिद्ध बताया गया, कभी भी आपको केले के पत्तों पर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आपके घर में कोई अगर पुराने समय से मान्यता चली आ रही है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तर्पण में मिट्टी के बर्तनों का भी जो इस्तेमाल है पूरी तरह से वर्जित बताया जाता है। तो ऐसे में सबसे सिंपल और आसान तरीका है, लोहे के या इस तरह के जो बर्तन होते हैं उनका कभी इस्तेमाल ना करें, या तो लकड़ी के बने या दोने होने चाहिए उनका इस्तेमाल आपको करना है, लोहे का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अलावा किन चीजों का यूज करना है और किन जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनका बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। श्राद्ध में पका हुआ या बिना पका हुआ अन्न अर्पित करके पितरों को तृप्त करने की परंपरा है। आप दोनों तरह से कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या क्या सामान हो सकता है? गाय का दूध, उससे बनी हुई वस्तुएं, जो धान, तिल, गेहूं, मूंग, आम, बेल, अनार, आंवला, खीर, नारियल, फालसा, नारंगी, खजूर, अंगूर, चिरौंजी, बेर, मटर, सरसों का तेल, तिल्ली का तेल, ये सब आप यूज कर सकते हैं। वही याद रखिए, एक सबसे जो जरूरी बात है, कुछ अब ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको पिंडदान में यानी कि इस वक्त श्राद्ध में इस्तेमाल नहीं करनी है। उड़द होती है, मसूर, अरहर, गाजर, कई बार लोग गाजर का हलवा या गाजर से बनी चीज या अरहर की दाल बनी है घर में उसी से श्राद्ध भूज देते हैं। तो उड़द, मसूर, अरहर, गाजर, लौकी गोल वाला जो होता है, बैंगन, शलजम, हींग, प्याज, लहसुन, काला नमक, जीरा, सिंघाड़ा, जामुन, सुपारी, कैथ, महुआ, अलसी, पीली सरसों, उसको मृत्यु के समय पर इस्तेमाल किया जाता है। चना, मांस और अंडे इत्यादि का जो यूज है बिल्कुल वर्जित होता है, यह आपको श्राद्ध के समय पर बिल्कुल भी यूज नहीं करना। उसके बाद ब्राह्मण भोज की बात आपने कई बार सुनी होगी, अगर आपका बजट होता है तो आपको ब्राह्मण भोज कराना चाहिए। पर शास्त्रों में साफ साफ लिखा है ब्राह्मण भोज उसको कराना चाहिए, जैसे कि मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि जो पात्र है अपात्र ब्राह्मण को श्राद्ध का भोजन पे आमंत्रित नहीं करना चाहिए। पात्र है, भूखा है, गरीब है, उसको आप करा सकते हैं। इसके अलावा तर्पण सभी पितरों को तृप्त करता है और ब्राह्मण भोज एक पितर को तृप्त करता है, इसीलिए पिंड दान के साथ साथ आप तर्पण पर भी ध्यान दीजिए। पीपल को और कौवे को प्रतीक माना जाता है पितरों का। मान्यता है कि अगर आप पीपल के नीचे दिया जलाते हैं या कोई को भोजन कराते हैं तो पितरों को तर्पण प्राप्त होता है।

आप सुन रहे हैं सुबह भारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। रुद्रम चामकम, ये पावरफुल मंत्र आपके जीवन से सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को निकाल कर बाहर फेंक देगा। श्री रुद्रम चमकम संपूर्णम।

0: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC NET, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी, उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
3: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
4: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर।
2: जुकाम, खांसी या बुखार,

0: कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
1: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख कान नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
2: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
1: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
3: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
0: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

जय हिंद वंदे मातरम। मैं वास्तु कृष्ण हूँ और आप सुन रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। दोस्तों, पितृपक्ष चल रहे हैं, 16 दिनों तक चलने वाला ये कोई मामूली समय नहीं होता दोस्तों। अपनी जिंदगी को रूपांतरित करने का, पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने का या बदलने का समय होता है। अगर आपकी जिंदगी में लंबे समय से बहुत सारी परेशानियां चली आ रही हैं, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में पितृदोष हो सकता है। इसकी पहचान कैसे करेंगे? अगर ऐसा माना जाता है, वास्तुशास्त्र में या ज्योतिष में भी इन बातों का उल्लेख मिलता है, ये गरुड़ पुराण में भी उल्लेख मिलता है, जो ब्लेसिंग्स होती है हमारे पितरों की, उनका एक डिपार्टमेंट होता है हमारी जिंदगी में। जैसे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति होना, या बच्चों की शादी होना, या घर बनाना, मकान बनाना, या जमीनें खरीदना, व्यापार अच्छा चलना, घर में खुशहाली होना, विवाह इत्यादि होना, ये सारे जो काम है ये पितरों का ही डिपार्टमेंट होता है। अगर इनमें से कोई भी काम नहीं हो रहा है आपकी जिंदगी में, आपकी ग्रोथ रुकी हुई है, आप अपना घर नहीं बना पा रहे हैं, आपके घर में खुशहाली नहीं है, ग्रह कलेश रहता है, या आप लगातार बीमारियों के प्रकोप में फंसे हुए हैं, तब ऐसे लक्षण होते हैं कि ये पितृदोष बताते हैं। आपको अपने घर के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से को ठीक करना चाहिए, वहां पर अपने पितरों की तस्वीरें, फोटो इत्यादि लगाने चाहिए, अपने पितरों को जरूर इस समय पर आपको पूजना चाहिए।

सुभारती आजाद हिंद रेडियो पर आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और ये है आपका अपना खास कार्यक्रम सुप्रभातम। दोस्तों हम बात कर रहे हैं श्राद्ध की, पितृपक्षों की। क्या होते हैं श्राद्ध, क्या होते हैं पितृपक्ष? जैसा कि आप भी जानते होंगे, अच्छी तरह से समझते होंगे, श्राद्ध श्रद्धा से आता है। श्रद्धा हमारे पितरों में, पितृ अर्थात जो हमारे पूर्वज रहे हैं, हम कृतज्ञ होते हैं उनके लिए, क्योंकि कभी वो थे, कभी उन्होंने स्ट्रगल किया, कभी उन्होंने जिंदगी में न जाने कैसा कैसा समय देखा था, तभी उनकी पीढ़ी चलते चलते आज हम तक आकर पहुंची है। तो हम अपनी कृतज्ञता को दिखाने के लिए, प्रकट करने के लिए श्राद्ध मनाते हैं। श्राद्ध यानी कि श्रद्धा उन लोगों में जो कभी यहां थे, जिनकी वजह से आज हमारा अस्तित्व है। ये थैंक यू बोलने का, धन्यवाद देने का एक तरीका है हमारी परंपराओं में। अब बहुत से लोग कहते हैं कि अब जो चला गया, जीते जी तो आपने उनको पूजा नहीं, पूछा नहीं, और मरने के बाद भला वो आपका भोजन कहां करने आएंगे। तो पश्चिमी सभ्यताओं को लोग बहुत ज्यादा मानते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिर्फ हमारे ही देश में नहीं, दुनिया की तकरीबन हर सभ्यता में, अंग्रेजों में भी, अमेरिका हो, लंदन हो, हर जगह आप जाएंगे ना, तो उनकी शादियों से पहले या कोई स्पेशल तीज त्योहार आने से पहले, और जो ये हेलोविन डेज होते हैं ना, हेलोविन फेस्टिवल जो होता है, ये सब एक तरीके से उनके पितृपक्ष होते हैं। आपको पता है वो अपने जो पूर्वज होते हैं उनकी समाधियों पर जाकर फूल चढ़ाते हैं, शादी से पहले भी जाते हैं, जैसे हमारे यहां भी परंपरा है अपने देवताओं को या पितरों को पूजने की। तो दुनिया की हर तकरीबन सभ्यता में अपने पूर्वजों को पूजने की मान्यता है। माना जाता है कि इन 16 दिनों में, जिन्हें हम 16 कनागत भी बोलते हैं और पितृपक्ष भी बोलते हैं, हमारे पूर्वज यहां आते हैं अपने परिवार को देखने के लिए और ब्लेसिंग्स देने के लिए आते हैं। तो भूल से भी ऐसा न कीजिएगा कि आप अपने पितरों को ना पूजें।

स्वागतम आपका, मैं हूँ वास्तु कृष्णा, सुभारती आजादी रेडियो 90.0 एफएम आप सुन रहे हैं। दोस्तों, बात कर रहे हैं श्राद्ध और पितृपक्ष के बारे में। तिल देव अन्न कुष्म त्रिदेव का वास है। जी हाँ, शास्त्रों में तिल को देव अन्न कहा गया है। इसी कारण श्राद्ध कर्म में काले तिल का प्रयोग विधान बताया गया है। मान्यता है कि बिना तिल के श्राद्ध करने पर दुष्ट आत्माएं हवि वो आकर भोजन ग्रहण कर लेते हैं। काले तिल का यूज पिंड इत्यादि के साथ जरूर करना चाहिए, ग्रहण कर लेती है वरना दूसरी आत्माएं आकर और आपके पितरों को जो श्राद्ध आप कर रहे हैं वो नहीं मिल पाता। श्राद्ध में कुश का भी विशेष महत्व होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ब्रह्मा विष्णु और महेश जड़ मध्य और अग्रभाग में निवास करते हैं। पितृपक्ष में पितरों का कुश की नोक पर निवास करने की मान्यता है, इसीलिए तर्पण करते समय कुश को उंगलियों में धारण किया जाता है। हम जो भी तर्पण करते हैं वो कुश द्वारा पितरों को प्राप्त होता है। कुश का आसन माना गया है सर्वश्रेष्ठ। श्राद्ध बिना आसन के नहीं करना चाहिए, इसमें कुश का आसन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। लकड़ी के पट्टे का भी उपयोग आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें लोहे की कीले नहीं लगी होनी चाहिए, क्योंकि श्राद्ध कर्म में लोहे का जो यूज है वो वर्जित माना जाता है। ऊन और रेशम के आसन के साथ कंबल, तृण और पर्ण से बने आसनों का भी उपयोग आप श्राद्ध में कर सकते हैं। पितृपक्ष में दान की परंपरा बताई जाती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में भी इसकी डिटेल में हमको जानकारी मिलती है। पितृपक्षों में पितरों के निमित्त दान करने की परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्राद्ध पक्ष में पितृगण अपने स्वजनों के, अपने परिवार के, अपने बच्चों के यहाँ बिना आवाहन के पहुंच जाते हैं, सूर्योदय के समय पहुंच जाते हैं और सूर्यास्त तक रहते हैं और 15 से 16 दिनों तक वहीं रहते हैं। इसी कारण इन दिनों गरीबों और ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देने की परंपरा परिवारों में बताई जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको भंडारे ही करना है, जो आपकी सामर्थ्य है उसके हिसाब से हमारे ऋषि मुनियों ने हमें क्या करना चाहिए ये बता दिया है।

0: भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं, तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: बीए ऑनर्स हिंदी, बीए ऑनर्स इंग्लिश, एमए हिंदी, एमए इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा एआई आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, यूजीसी नेट, जेआरएफ तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी, उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
3: यू ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
4: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर।
2: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, एचपी पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
5: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
6: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
5: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

जय हिंद, आपका स्वागत है सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और यह है सेहत सही और लाभ कई स्मार्ट एनजीओ की खास प्रस्तुति। दोस्तों, सेहत सही और लाभ कई कार्यक्रम में हम अक्सर ऐसी ही बात करते हैं कि हमें किस प्रकार अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, गर्भवती महिलाओं का ध्यान रखना चाहिए, फैलने वाली बीमारियां चाहे फीवर हो या कुछ संचारी रोग हो उनमें कैसे हमें ध्यान रखना चाहिए, टीबी की जो बीमारियां होती है या उससे जुड़ी अन्य प्रकार की ऐसी बीमारियां जो घातक होती है, हर तरह की समस्याओं में किस तरह से ध्यान रखना चाहिए। ऐसे ही आज हम बात करने वाले हैं हर उस परिवार के लिए जिसके घर में कोई महिला गर्भवती है और खासकर उन परिवारों के लिए जहां पहले से एक छोटा बच्चा भी है और अब घर में एक नए नन्हे मुन्ने मेहमान के आने की तैयारियां चल रही है। क्योंकि गर्भावस्था के दौरान सिर्फ मां के शरीर में ही बदलाव नहीं होते, ये पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। एक मां अपने शरीर के अंदर एक नई जिंदगी को पाल रही है, उसके शरीर, उसके खान पान, उसकी नींद, उसके तनाव, उसकी नियमित जांच का असर मां और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। तो आज इसी बारे में बात करेंगे कि एक पूरे परिवार की जिम्मेदारी क्या क्या होती है।

0: सुन रहे हैं सेहत सही लाभ गई वस्तु कृष्णा के साथ सुभारती आजाद हिंद रेडियो पर।
1: जी हाँ, आप सुन रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम। मैं हूँ वास्तु कृष्णा। सेहत सही और लाभ कई स्मार्ट एनजीओ की ये खास प्रस्तुति है। आज बात कर रहे हैं जिस परिवार में एक नन्हे मुन्ने मेहमान के आने की तैयारी चल रही है तो परिवार की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं। एक माँ के ही जिंदगी में बदलाव नहीं होते, पूरे परिवार के जीवन में बदलाव होते हैं। गर्भवती महिला का ध्यान कैसे रखें, खून की कमी यानी एनीमिया से कैसे बचे, अल्ट्रासाउंड और जरूरी जांच कब होती है, गर्भावस्था में किन परेशानियों का खतरा रहता है, और अगर घर में पहले से एक छोटा बच्चा है तो नए बच्चे के आने पर उसके मन और स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखें। सबसे पहले माँ अकेली जिम्मेदार नहीं। साथियों, अक्सर कहा जाता है कि गर्भवती है अपना ध्यान रखा करो, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ माँ को यह कहना काफी नहीं। अगर माँ को आराम चाहिए तो पूरे परिवार को काम बांटना होगा। अगर पौष्टिक भोजन खाना चाहिए तो परिवार को भी भोजन की व्यवस्था करनी होगी। अगर अस्पताल जाना है तो कोई ना कोई साथ जाना चाहिए। अगर माँ परेशान है तो कोई उसकी बात सुनेगा, ये जरूरी है दोस्तों। यानी गर्भावस्था में देखभाल सिर्फ सलाह नहीं होती, परिवार का व्यवहार भी वो होता है।
2: सेहत

जी हाँ, यह है सेहत सही लाभ कई। मैं हूँ वास्तु कृष्णा, स्मार्ट एनजीओ की खास प्रस्तुति। आज बात कर रहे हैं, जब एक नन्ना मुन्ना मेहमान आने वाला होता है तो परिवार को किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। अक्सर कहते हैं कि अपना ध्यान रखा करो बेटा, लेकिन बात वहीं तक सीमित नहीं होती। परिवार की जिम्मेदारी होती है गर्भावस्था में महिलाओं का ध्यान रखने के लिए। अब बात करते हैं खानपान की। गर्भावस्था में महिलाओं को दो लोगों का खाना खाने की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है बल्कि पौष्टिक और संतुलित भोजन की। दाल, हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज, दूध, दही, अंडा या उपलब्ध पौष्टिक विकल्प जो भी आपके परिवार में होता है, पर्याप्त प्रोटीन और डॉक्टर की सलाह के अनुसार आपको सप्लीमेंट लेने चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात, आयरन और फोलिक एसिड की दवा डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी की सलाह के अनुसार ही नियमित लेना जरूरी है, क्योंकि गर्भावस्था में खून की कमी यानी एनीमिया एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य समस्या हो सकता है। महिलाओं को लगातार कमजोरी, चक्कर आना, सांस फूलना, दिल की धड़कन तेज लगना या अत्यधिक थकान होना, तो इसे केवल प्रेगनेंसी में ऐसा होता है कहकर नजरअंदाज मत कीजिएगा। जरूरत पड़ने पर हीमोग्लोबिन की जांच करानी चाहिए और डॉक्टर से उसके अनुसार उपचार तय करते रहना चाहिए। अब बात करते हैं जांचों की। गर्भावस्था में नियमित ANC यानी एंटीनेटल केयर बहुत जरूरी होती है। शुरुआत में डॉक्टर गर्भावस्था की पुष्टि के साथ महिला की पूरी स्वास्थ्य स्थिति देखते हैं, जैसे रक्तचाप, वजन, हीमोग्लोबिन और जरूरत के अनुसार रक्त और मूत्र की जांचें भी कराई जाती हैं। इसके बाद गर्भावस्था की प्रगति के अनुसार जांचें कई बार दोहराई जाती हैं। अब बात आती है अल्ट्रासाउंड पर। बहुत से परिवारों में ये भ्रम होता है कि अल्ट्रासाउंड सिर्फ बच्चे का लिंग देखने के लिए या जांचने के लिए होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अल्ट्रासाउंड का उद्देश्य डॉक्टर को गर्भावस्था की स्थिति समझने में मदद करना होता है, जैसे गर्भ की उम्र कितनी है, बच्चे की वृद्धि क्या है, प्लेसेंटा की स्थिति और गर्भावस्था से जुड़ी दूसरी चिकित्सीय बातें।

0: भारतीय आजाद हिंद रेडियो पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और यह है सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम स्मार्ट एनजीओ की खास प्रस्तुति। आज हम बात कर रहे हैं जिस परिवार में नन्ना मुन्ना कोई मेहमान आने वाला है उसकी तैयारियां चल रही है, उस परिवार को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। थोड़ी देर पहले हमने अल्ट्रासाउंड का जिक्र किया था। हर गर्भावस्था में अल्ट्रासाउंड की संख्या एक जैसी नहीं होती, इसीलिए किसी पड़ोसी या रिश्तेदार की जांच देखकर अपनी प्रेगनेंसी की जांच तय मत कीजिएगा। अपने डॉक्टर की सलाह को प्राथमिकता दीजिएगा और भारत में भ्रूण के लिंग की पहचान या बताना कानूनी प्रतिबंध है। अल्ट्रासाउंड का उद्देश्य मां और बच्चे की स्वास्थ्य निगरानी होता है। अब सवाल, गर्भावस्था में किस बीमारी का खतरा सबसे ज्यादा होता है? साथियों, हर गर्भवती महिला को एक जैसी बीमारियां नहीं होती, लेकिन कुछ स्थितियों पर विशेष निगरानी की जरूरत होती है, जैसे कि खून की कमी यानी एनीमिया, उच्च रक्तचाप, ये सबसे बड़ी समस्या बन जाता है। गर्भावस्था में डायबिटीज का भी खतरा रहता है। थायराइड जैसी भी कुछ स्थितियां देखने के लिए मिलती है। मूत्र या अन्य संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है और कुछ मामलों में गर्भावस्था से जुड़ी ब्लीडिंग या दूसरी कॉम्प्लिकेशंस बनी रहती है। इसीलिए सिर्फ पेट बढ़ रहा है और बच्चा हिल रहा है इतना देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है। नियमित जांचें बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर महिला को तेज सिर दर्द, आंखों के सामने धुंधला दिखना, चेहरे या हाथों में अचानक ज्यादा सूजन होना, तेज पेट दर्द होना, पानी ज्यादा निकलना, तेज बुखार होना, सांस लेने में परेशानी होना, बच्चे की मूवमेंट में अचानक कमी होना, तो तुरंत डॉक्टर या अस्पताल से संपर्क करना चाहिए। ऐसे लक्षणों में कल देखते हैं वाला रवैया बिल्कुल काम नहीं करेगा। परिवार की ये जिम्मेदारी है कि जैसे ही महिला को कोई समस्या हो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए।
1: अरे स्मार्ट एनजीओ प्रस्तुत करता है।

से ही लाभ कई में आपका फिर से स्वागत करता हूं। मैं हूं वास्तु कृष्ण, आप सुन रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। आज के कार्यक्रम में बात कर रहे हैं कि जब आपके घर में एक नन्ना मुन्ना मेहमान आने वाला होता है तो परिवार को किस प्रकार से महिला का ध्यान रखना चाहिए, पूरे परिवार की क्या क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए और जो गर्भवती महिला है उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं। हालांकि परिवार में खुशियों का माहौल होता है, पर कई बार ऐसा देखने और सुनने में आता है कि जब एक नन्ना मेहमान आता है, नवजात का जन्म हो जाता है, तो जो बच्चा पहले से घर में बड़ा होता है वो स्ट्रेस में चला जाता है, तनाव में चला जाता है, अपने आप को अलग थलग महसूस करना शुरू कर देता है। ऐसा कई बार देखने में आता है। अगर घर में पहले से एक छोटा बच्चा है तो नए बच्चे के आने से सिर्फ माँ और पिता की जिंदगी नहीं बदलती, बड़े बच्चे की दुनिया भी पूरी तरह से बदल जाती है। पहले घर में सबका ध्यान उसी पर था, माँ की गोद उसी की थी, पापा का समय उसी के लिए था, दादा दादी की सारी बातें उसी के आसपास थी, और अचानक घर में एक नया बच्चा आ गया। अब हर कोई कह रहा है कि बेबी को उठाओ मत, बेबी सो रहा है, बेबी को दूध पिला रो, बेबी को परेशान मत करो, और बड़ा बच्चा मन ही मन सोच रहा है क्या अब मम्मी मुझसे पहले जैसा प्यार नहीं करती। यही वजह है कि कुछ बच्चे नए भाई या बहन के जन्म के बाद ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, कुछ बार बार रोते हैं, कुछ माँ का ध्यान खींचने के लिए वही काम करने लगते हैं जो वो छोटे बच्चे थे तब करते थे। इसे केवल जिद मत समझिएगा। अगर आपका बड़ा बच्चा जिद्दी हो गया है तो ये केवल कोई मामूली जिद नहीं। कई बार बच्चे अपने माता पिता से जुड़ाव और सुरक्षा पाने का तरीका खोज रहे होते हैं, उनका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं और इस तरह की हरकतें वो शुरू कर देते हैं। तब हमें क्या करना चाहिए? नए बच्चे के आने से पहले ही बड़े बच्चे को तैयारी में शामिल कर लीजिए। उसे बताइए कि हमारे घर एक छोटा भाई या बहन आने वाला है। उसे उसकी उम्र के अनुसार बातें करना शुरू कर दीजिए। उसे छोटे बच्चे के कपड़े चुनने में शामिल कीजिए, खिलौने चुनने में शामिल कीजिए, लेकिन सबसे जरूरी बात, उसे यह महसूस मत होने दीजिए कि अब उसका महत्व कम हो गया है। नए बच्चे के जन्म के बाद रोज कुछ समय सिर्फ बड़े बच्चे के लिए रखिए, चाहे 15 मिनट ही हो। उसके साथ बैठिए, उसकी कहानियां सुनिए, उसके साथ खेलिए, उसे गले लगाइए और कभी कभी साफ शब्दों में कहिए, मम्मी पापा तुम्हें पहले जितना प्यार करते थे अब भी उतना ही प्यार करते हैं, क्योंकि बच्चे को यह सुनना बहुत अच्छा लगता है। और एक गलती बिल्कुल ना करें, बड़े बच्चे से बार बार ये मत कहिए तुम तो बड़े हो गए हो, अब तुम्हें समझना चाहिए, तुम्हारा छोटा भाई उसे परेशान मत करो। बच्चा बड़ा हुआ है लेकिन वो बच्चा ही है, उसकी भावनाओं को भी वही जगह दीजिए जो पहले थी। उसे जिम्मेदारियां दीजिए लेकिन जिम्मेदारियों के बोझ में मत दबाइए। उससे कहिए तुम हमारे बड़े बच्चे हो और तुम्हारी मदद हमारे लिए बहुत खास है, इसीलिए बच्चे को परिवार में अपनी जगह महसूस होने दीजिए। अब मां की जिम्मेदारी क्या है? मां की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह नहीं कि वो हर काम अकेले करे, बल्कि वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे, डॉक्टर की सलाह माने, दवाइयां और सप्लीमेंट समय पर लेती रहे, पर्याप्त आराम करे, सही भोजन करे, अपनी परेशानियां छिपाए नहीं, और जब दूसरा बच्चा पैदा हो जाए तो मां खुद को दोषी महसूस ना करे कि वो दोनों बच्चों को बराबर समय नहीं दे पा रही है। ये तो होगा ही, दो बच्चों में दोनों को बराबर समय कैसे मिलेगा भला? शुरुआत में ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसीलिए परिवार का सहयोग बहुत जरूरी है। पूरे परिवार की जिम्मेदारी बन जाती है कि माता की जो हेल्प करे, और पिता की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। पिता सिर्फ अस्पताल से ले जाने वाला व्यक्ति नहीं होता, पिता की भूमिका है मां को आराम देना, बड़े बच्चे के साथ समय बिताना, घर के कामों में हाथ बटाना, अपॉइंटमेंट्स और रिपोर्ट्स पर ध्यान देना, दवाओं को, जरूरी सामान को व्यवस्थित रखना, और सबसे जरूरी मां और बड़े बच्चे दोनों को यह महसूस कराना कि वो दोनों अकेले नहीं है। दादा दादी और परिवार की भूमिका क्या होगी? परिवार के बड़े लोगों का अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अनुभव के साथ एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी, सही जानकारी। हर पुरानी परंपरा हर स्थिति में सही हो ये जरूरी नहीं, इसीलिए नवजात को क्या देना है, कब देना है, कौन सी दवा देनी है, कौन सा घरेलू नुस्खा अपनाना है, इस मामले में डॉक्टर की सलाह सबसे ज्यादा जरूरी है, उसी को प्राथमिकता दें, और मां को लगातार टोका टाकी करने के बजाय उसका सहयोग करें। अंत में सबसे महत्वपूर्ण संदेश दोस्तों, एक बच्चा पैदा होने पर घर में सिर्फ एक नया सदस्य नहीं आता, एक नई जिम्मेदारी भी
आती है। और उस जिम्मेदारी का मतलब सिर्फ बच्चे को कपड़े पहनाना और खाना खिलाना नहीं होता, इसका मतलब माँ का स्वास्थ्य, नवजात की सुरक्षा, सही पोषण, सही समय पर टीकाकरण, नियमित स्वास्थ्य जांचें और बड़े बच्चे के मन में ये विश्वास बनाए रखना कि मेरे घर में नया बच्चा आया है लेकिन मेरा प्यार कम नहीं हुआ। तो आज ऐसा संकल्प लेते हैं, गर्भवती महिला को अकेला नहीं छोड़ेंगे, उसके खान पान और आराम का ध्यान रखेंगे, नियमित ANC जांचें कराएंगे, खून की कमी को नजरअंदाज नहीं करेंगे, डॉक्टर की सलाह के अनुसार अल्ट्रासाउंड जरूर कराएंगे, खतरे के संकेतों में तुरंत अस्पताल भागेंगे, और जब नया बच्चा हमारा नन्ना मुन्ना घर में आ जाए तो बड़े बच्चों को ये महसूस नहीं होने देंगे कि उसकी जगह अब कम हो गई है या अब हम उसे पहले जैसा प्यार नहीं करते। बच्चे को सिर्फ भोजन नहीं चाहिए, उसे चाहिए सुरक्षा, उसे चाहिए स्वास्थ्य, उसे चाहिए समय, और सबसे ज्यादा जरूरी उसे ये एहसास चाहिए कि वो प्यार किया जा रहा है। याद रखिए, स्वस्थ माँ, स्वस्थ नवजात और सुरक्षित भावनाओं वाला बड़ा बच्चा, यही एक स्वस्थ परिवार की असली तस्वीर होती है। सुनते रहिए सेहत सही लाभ, कई अगले कार्यक्रम में होगी फिर मुलाकात। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।

टूटी। आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ की वस्तु कृष्णा के साथ सुभारती आजाद हिंद रेडियो पर।

आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ गई वस्तु कृष्णा के साथ सुभारती आजाद हिंद रेडियो पर।

जय हिंद, नमस्कार। आपका स्वागत है सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और आज की इस स्पेशल कार्यक्रम में हम टीबी के रोग की बात करेंगे। टीबी का जो रोग होता है बहुत भयानक होता है। पुराने जमाने में न जाने कितने लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते थे टीबी रोग के बारे में, क्योंकि ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी। आज भी अवेयरनेस तो है, लेकिन शर्म कहीं ना कहीं आज भी लोगों के मन के भीतर घर करी हुई है। अगर किसी को टीबी हो जाता है या उसके परिवार में टीबी का पता चल जाता है, तब भी लोग इस बात को किसी को बताते नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि समाज में उनका बहिष्कार हो जाएगा, उनके बच्चे की शादी नहीं होगी, लोग उनसे दूरी बनाना शुरू कर देंगे, है ना, ऐसा उनको लगता है, जबकि ये सच नहीं है। दोस्तों, टीबी अब कोई ऐसी बीमारी नहीं रही है कि जो जानलेवा हो, अगर टाइम पर आप उसकी दवा लेना शुरू कर देते हैं। दवा पूरी तरह से मुफ्त है, सरकार के जो पूरा का पूरा सिस्टम है, तंत्र है, वो आपके लिए लगा रहता है। इसमें सरकारी डॉक्टर्स हैं, निक्षय टीम है। इसके अलावा जैसे सेहत से ही लाभ कई कार्यक्रम के माध्यम से स्मार्ट एनजीओ भी लगातार आप तक जानकारी पहुंचाता है। हमारे आजाद हिंद रेडियो के माध्यम से हम भी यहां पर लगातार जागरूकता फैलाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा सरकार भी नित नए आयोजन करती रहती है। अब ऐसे में जिम्मेदारी आपकी बनती है दोस्तों कि कैसे आप टीबी को जड़ से खत्म करने में मदद कर सकते हैं। इसीलिए इस बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए हमने आज बात की है मेरठ जिले के ट्रीटमेंट सुपरवाइजर डॉक्टर विशाल राणा जी से। पूरे जिले में कहां पर दवाइयों का वितरण किस प्रकार होता है, कहां पर आयोजन हो रहा है और किस तरीके से मरीजों की सहायता होगी, ये सारी जानकारी हमें इनसे प्राप्त हुई। तो आइए छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं डॉक्टर विशाल राणा जी से।

0: जो प्राइवेट में इलाज कराता है, जैसे आपने बताया सरकारी इलाज में तो सारी दवाइयां चेकअप सब कुछ फ्री होते हैं, प्राइवेट डॉक्टर के पास अगर कोई अपना टीबी का इलाज कराने जाता है तो क्या वो डॉक्टर को पैसे देता है या वहां पर भी सरकार फ्री करा देती है?
1: बिल्कुल, अगर कोई भी व्यक्ति प्राइवेट में इलाज कराता है तो उसको प्राइवेट डॉक्टर के नियमों के आधार पर चलना पड़ेगा। अच्छा। वो डॉक्टर उसकी जो जांच कराए, एक्सरे कराए, बलगम कराए या और भी कोई जांच कराए और जहां वो कराए, जहां के लिए सजेस्ट करे, तो वो जांच वो रोगी कराता है उसके हिसाब से। अगर डॉक्टर उचित समझता है, रोगी की आर्थिक हालत को देखते हुए अगर कहता है कि ठीक है ये जांच आप सरकारी में करा लो, या जो हमारी एक टीम है जो प्राइवेट डॉक्टर से ही कोऑर्डिनेट करती है, सरकार द्वारा एक एनजीओ को भी नियुक्त किया हुआ है, वो लोग प्राइवेट डॉक्टर्स के यहाँ जाके उनको काउंसिल करते हैं, उनके यहाँ पे आए हुए रोगियों को एनरोल करते हैं हमारे सिस्टम में और उनको भी सपोर्ट देते हैं, उनके होम विजिट करते हैं, उनको 500 रुपये महीना दिलाने के लिए सारे काम करते हैं। तो निर्भर करता है उस डॉक्टर के ऊपर कि वो किस तरीके से अपने मरीज को देखता है।
0: लेकिन देखने वाली बात यह है दोस्तों, अगर आप भी कहीं से हमको देख और सुन रहे हैं तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने यहाँ पर ये बताया कि आप सरकारी सिस्टम में अगर आएंगे तो सरकार आपका ध्यान भी रखेगी, आपको पैसे वगैरह भी देगी और आप प्रॉपर दवा खा रहे हैं या नहीं ये भी, जैसा कि सर ने बताया, वो टीम इस बात का ध्यान रखती है, क्योंकि इसकी जो सबसे अहम बात है कि दवाई एक दिन भी मिस नहीं होनी चाहिए।

0: तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर हमको राणा जी ने इतनी काम की बात बताई है कि अगर आपके घर में टीबी का मरीज हो जाता है तो उसके साथ साथ पूरे परिवार को कुछ चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, परहेज रखना है, एक दूसरे से थोड़ा सा डिस्टेंस भी मेंटेन रखना है, और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि पूरे परिवार का भी एक ट्रीटमेंट चलता है, वो सरकार की तरफ से पूरी तरह से निःशुल्क होता है। सर, अगर कोई जानना चाहे टीबी के बारे में, ज्यादा जानकारी लेना चाहता, अपना इलाज कराना चाहता है, तो आप लोगों से या सरकारी सिस्टम से वो किस तरह से सहायता प्राप्त कर सकता है?
1: देखिए, वैसे तो पूरे मेरठ को डिसेंट्रलाइज करके सरकार ने हर व्यक्ति के नजदीक में जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, सब जगह टीबी की जांच के इलाज की सुविधाएं शुरू की हुई है। बड़े इंस्टीट्यूशन हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज है, पैरेलल अस्पताल है, वरना कोई जहां भी रहता हो, वो मेरठ में शहर में रहता हो, वो ममाना, वो हस्तनापुर, वो भूड़बराल, वो सरदना, जहां रहता हो उसके ब्लॉक में, उसके आसपास में छोटे बड़े अस्पताल हैं। फिर भी अगर किसी को कोई जानकारी ऐसी लेनी हो तो मैं अपना नंबर यहां दोहराने जा रहा हूं। कोई भी व्यक्ति निसंकोच टीबी से संबंधित किसी भी समस्या के लिए मुझे फोन कर सकता है और जानकारी ले सकता है। मेरा नंबर है 9917717273। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं अपना नंबर 9917717273। तो कोई भी शंका होने पर, कोई भी जानकारी, किसी भी आवश्यकता में, कोई भी आपका श्रोता निसंकोच मुझे फोन कर सकता है।

0: ये है मेरठ का नंबर वन सुबह आरती आजाद हिंद रेडियो। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और ये कार्यक्रम चल रहा है सेहत सही लाभ कई। इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है स्मार्ट एनजीओ, तो सुनते रहिए सेहत सही लाभ कई।
1: अरे स्मार्ट एनजीओ प्रस्तुत करता है

0: जी हाँ दोस्तों, सेहत से ही लाभ कई सुबह भारतीय आजादी रेडियो 90.0 FM पर आप सुन रहे हैं। स्मार्ट एनजीओ की प्रस्तुति है, मैं हूँ वास्तु कृष्णा। और इस खास एपिसोड में आज हमने डॉक्टर विशाल राणा जी से बात की, जो कि सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर हैं जिला मेरठ के। और चलते चलते सर, आपका क्या संदेश रहेगा हमारे श्रोताओं के लिए?
1: बस मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि सभी व्यक्ति सावधानी रखें, खासतौर से टीवी के रोगी, अपने मुंह पर कपड़ा लगा के रखें, मास्क लगा के रखें, खांसते छींकते थूकते, और अपना इलाज पूरा करें।
0: जी,
1: इलाज पूरा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बाद ही आप एक आदर्श नागरिक होने का फर्ज निभाते हैं, आदर्श रोगी होने का फर्ज निभाते हैं। और बाकी सरकार और हम पूरा सिस्टम हमेशा इस रोग को जड़ से समाप्त करने के लिए सभी के साथ है। मैं फिर से आजाद हिंद चैनल का धन्यवाद देता हूं कि इतना जागरूकतापूर्ण कार्यक्रम उन्होंने लिया, अपना समय दिया, और मैं समझता हूं कि जरूर इस जानकारी से हमारे शहर के, हमारे देश के बहुत लोग लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर, बहुत ही काम की जानकारियां आपने यहां पर हमारे श्रोताओं के लिए दी। मैं चाहता हूं दोस्तों, अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप सीधा सरकारी अस्पतालों में जाकर संपर्क कर सकते हैं। और जैसे कार्यक्रम में सर ने भी अपना मोबाइल नंबर भी बताया, तो आप इनसे भी संपर्क कर सकते हैं। और सुनते रहे सुबह भारतीय आजाद हिंद रेडियो पर ये खास प्रस्तुति, जिसके प्रस्तुत करता है स्मार्ट एनजीओ। अगर कोई और जानकारी टीबी रोग के बारे में आपको चाहिए, कोई मदद चाहिए, तो हमारा नंबर है 9639012111। होगी आपसे फिर अगली कड़ी में मुलाकात। अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, हर बीमारी को जड़ से हटाना है ये संकल्प करके रहिए, अपनी जिम्मेदारी को निभाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

जय हिंद। आपका स्वागत है सुबह भारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और अब आप सुनेंगे ये खास प्रस्तुति जिसके प्रस्तुत करता है स्मार्ट एनजीओ।

0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार, अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: यू ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
0: The Mars Resorts, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में, किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए। छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।

0: सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम आरजे वंशी के साथ।
1: Here we go, RJ Vanshi in the studio. Hey, hello, namaste, आदाब। मैं हूँ आपके साथ आपकी RJ Vanshi और जनाब गुड वाली मॉर्निंग है, गुड वाला प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ। कुछ ऐसी गल्ला शल्ला करती हूँ जो हो जाती है आपसे रिलेटेड, isn't it? तो चलिए आज का फॉर्मूला ऑफ द डे आप तक पहुँचाती हूँ जो कुछ यूँ कहता है, सुनिएगा जरा। यदि मंजिल न मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियाँ बदलते हैं, जड़े नहीं जनाब। तो इसीलिए जब भी आपको लगे कि आप मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, आपके काम नहीं बन पा रहे हैं, तो जनाब जरा अपने एक्शंस को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए और ये देखिए कि आप खामियां गलतियां कहां कर रहे हैं, कहां आपसे चूक हो रही है कि आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। देखिए मुकाम हासिल करना है तो जनाब सफर तो तय करना पड़ेगा, और सफर के लिए रास्ता कौन सा आपको चुनना है वो आप तय करते हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि आपकी जो भी डिसीजन मेकिंग है वो सही रहे और आप जीवन में हमेशा सही रास्ते पर ही चलते रहें। और इवन कभी कभी पता है क्या होता है, आप भीड़ के पीछे चलना प्रेफर करते हैं, लेकिन जनाब भीड़ आपको बेशक रास्ते तक ले जाए, लेकिन पहचान तो आपको अलग रास्ता ही देकर जाता है। तो चलिए फिलहाल मैं आपको लेकर चलूंगी इस अपकमिंग गाने की, और बाकी आपको कुछ कहना है कुछ बताना तो घुमा सकते हैं लगा सकते हैं 9639012111 बिंदास होकर। फिलहाल अभी ये गाना आपके लिए।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: Once again, welcome back to Azad in Radio 90.0 FM, Nation First, Always First। दोस्तों, ढेर सारी बातें आपसे कर रही हूँ और प्रोग्राम चल रहा है सेहत सखी और संसार। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स जिससे कि आप अपने स्किन का ध्यान रख सकते हैं और उसकी केयर कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा ही रूटीन आपके लिए लेकर आई हूँ जो कि आप रेगुलर बेसिस पर भी कर सकते हैं। असल में जब आपको लगता है कि आप की स्किन जो है बहुत ही ऑयली हो गई है या फिर आपको उसको ऑयल फ्री बनाना है, तो आप कौन कौन से तरीकों को अपना सकते हैं, चलिए इस पर बात करते हैं। सबसे पहले स्टेप होता है क्लींजिंग का। आप दिन में कम से कम दो बार सैलिसिलिक एसिड अगर इस्तेमाल करती हैं या फिर आप इसकी प्लेस पर टी ट्री ऑयल वाले फेस वॉश का इस्तेमाल कर सकती हैं, और ये त्वचा के लिए इसलिए अच्छा हो जाता है क्योंकि ये त्वचा में छिपे गहरे छिद्रों में जमे अतिरिक्त तेल को साफ कर देता है और इससे जो है आपकी स्किन ऑयल फ्री हो जाती है। वहीं बात करें अगर टोनिंग की, तो टोनिंग क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि ये बढ़े हुए पोर्स को सिकोड़ने में मदद करता है, और उनको आप किस तरीके से कर सकते हैं, आपको लेना होगा अल्कोहल फ्री टोनर या फिर आप शुद्ध गुलाब जल का प्रयोग भी कर सकते हैं। इससे भी आपको लगेगा कि आपकी जो स्किन है, अगर आपको उस पे एक्सेस ऑयल नजर आ रहा है या फील हो रहा है या फिर चिपचिपाहट आपको लग रही है, तो ये स्टेप आपको काफी हद तक कामयाबी दे सकता है। और क्या बातें हैं जो मुझे आपसे करनी है, करूंगे सारी की सारी और बताऊंगी बाकी की चीजें भी। बट अभी क्या करेंगे, अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद आई विल बी बैक टू यू, कहीं मत जाइएगा दोस्तों। और इसी के साथ आपको कुछ कहना है, कुछ बताना है, तो बिल्कुल मुझसे साझा कर सकते हैं। नंबर बहुत ही आसान सा है मेरा, 9639012111। आप इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप पर भी मैसेज भेज सकते हैं सेम ही नंबर पर। हमारे सोशल हैंडल्स पर जुड़ जाइए और अपनी सारी बातें हमसे कह डालिए। रेलेवेंट पोस्ट में आप हमें टैग भी कर सकते हैं और हमसे कोलैबोरेट भी कर सकते हैं, है ना, मजे की बात। चलिए इस बहुत ही प्यारे से गाने के साथ अभी कोलैबोरेट करेंगे, एंजॉय करेंगे ये गाना, उसके बाद आई विल बी बैक टू यू, कहीं मत जाइएगा दोस्तों। ऐसे ही सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट।

0: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC NET, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किट पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
1: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किशोर में।
3: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
1: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड, किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
4: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
5: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल, झाजरा, देहरादून। कॉल करे 9760920085।

0: सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है आप सभी का। आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है सेहत सखी और संसार, और इसी के साथ बहुत सारा प्यार लेकर मैं लौटी हूँ आपके पास। मैं हूँ आपके साथ आपके आजीवंशी, और आज आपसे बातें कर रही हूँ, अपनी सखियों से बातें कर रही हूँ कि आप किस तरीके से डेली रूटीन के चलते भी अपनी स्किन का ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप क्लींजिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए सैलिसाइलिक एसिड वाला फेस वॉश, और या फिर आप टी ट्री ऑयल वाला फेस वॉश भी कंसीडर कर सकते हैं। ये जो भी आपके पोर्स होते हैं उनमें जमा जो डर्ट होता है या तेल होता है उसको साफ करने में काफी हेल्पफुल होता है। वहीं टोनिंग की बात करें तो टोनर बहुत ज्यादा जरूरी उन लोगों के लिए हो जाता है जिनकी स्किन पर बहुत ज्यादा उन्हें चिपचिपापन फील होता है, तो आप उसके लिए इसको यूज कर सकते हैं। और याद रखें कि टोनर आपका अल्कोहल फ्री हो, और साथ ही साथ अगर आप टोनर नहीं लगाना चाहते तो जो गुलाब जल होता है वो अपने आप में एक नेचुरल टोनर होता है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ आपको बताऊं कि मॉइस्चराइजिंग आपको अपनी स्किन रखनी है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोगों की ऐसी स्किन होती है जो बहुत ज्यादा चिपचिपाहट वाली होती है। तो आपको क्या करना है, आपको त्वचा में नमी की कमी आपको नहीं होने देनी है, और अगर ऐसा होता है तो होता ये है कि आपकी स्किन में ज्यादा तेल बनने लगती है, और इसीलिए आपको जेल बेस्ड वाले या फिर वाटर बेस्ड वाले मॉइस्चराइजर को चूज करना चाहिए और उसको लगाते रहना चाहिए। बाकी और क्या बातें हैं जो मुझे आपसे करनी है, करूंगी सारी की सारी, बट मीनवाइल अभी एंजॉय करेंगे अपकमिंग गाना। उसके बाद आई विल बी बैक टू यू, कहीं मत जाइएगा दोस्तों। यूं ही सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

मित्रों नमस्कार। आज बात करते हैं आजाद हिंद रेडियो की। आजाद हिंद रेडियो में एक आरजे हैं, आरजे वंशी, जो कि बहुत ही सुंदर आवाज और बहुत ही सुंदर नेचर की हैं। मैं रेगुलरली आजाद हिंद रेडियो से मोबाइल ऐप के द्वारा जुड़ा हुआ हूं। मैं शिवम ऋषिकेश से बात कर रहा हूं। मैं तो कहता हूं कि आप भी आजाद हिंद रेडियो से मोबाइल ऐप के जरिए जुड़िए और प्यारी सी आवाज आरजे वंशी को सुनिए दोपहर 11 से 1 मंडे टू सैटरडे आजाद हिंद रेडियो, जिसे सुन के लगता है कि हाँ, कुछ वो पुरानी यादें से हम जुड़े हैं जो हम रेडियो से पहले जुड़ते थे। आज वही बात आजाद हिंद रेडियो के द्वारा, आरजे वंशी के द्वारा हमें उसी लगाव से मिलाती है जो लगाव हम पहले

0: अरे अरे अरे रुको, क्या कर रही हो?
1: क्या कर रही हो मतलब, रात का बासी पानी फेंक कर ताज़ा पानी भर रही हूँ।
0: रात का बासी पानी?
1: जी, अब पीने के लिए तो ताज़ा पानी भरना ही पड़ेगा ना।
0: तुम्हें पता भी है, देश के ना जाने कितने हिस्सों में लोगों को ऐसा पानी नसीब नहीं होता। वो सड़ा हुआ गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। और तुम कहती हो बासी पानी, एक दिन में थोड़ी पानी खराब होता है।
1: तो फिर कैसे किया जाए?
0: इस पानी का जहाँ हो सके उपयोग किया जाए, और इस तरीके से फेंका या बहाया तो बिल्कुल ना जाए।
2: क्योंकि ऐसा करना पानी को उड़ेलना नहीं है, बल्कि अपने भविष्य के साथ खेलना है। जल है तो कल है, पानी बचाइए, भविष्य बनाइए।
3: सुभारती विश्वविद्यालय और आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM द्वारा जनहित में जारी। ये है मेरठ का नंबर 1 सुभारती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
1: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
2: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor. Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
0: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: वेल वेल वेल वेलकम बैक टू आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। दोस्तों ढेर सारी बातें आपसे कर रही हूं और इसी के साथ प्रोग्राम चल रहा है सेहत सखी और संसार मेरे यानी आरजे वंशी के साथ। कुछ बातें आपसे करती हूं इस प्रोग्राम में जो हो जाती है संसार से रिलेटेड, तो वहीं कुछ बातें आपसे करती हूं जो होती है आपकी सेहत से रिलेटेड, वहीं कुछ बातें होती हैं जो होती हैं हमारी सखियों से, और कुछ ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स आपको बताती हूं जो आपकी लाइफ को और भी ज्यादा सिंपल और सॉर्टेड कर देता है ना। तो कुछ ऐसे ही टिप्स आपसे साझा करती हूँ। वहीं अगर आपको कुछ कहना है, कुछ बताना है, तो बिल्कुल आप मुझसे जुड़ सकते हैं। नंबर बहुत ही आसान सा है हमारा 9639012111। इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं सुबह 9 बजे से 1 बजे तक। बिल्कुल लाइव आपसे बातें होती हैं, तो इस दौरान आप फरमाइशें भी कर सकते हैं किसी गाने की, और साथ ही साथ किसी गाने को आपको किसी को डेडिकेट करना है तो वो भी आप जरूर कर सकते हैं। कुछ अच्छा लिखना जानते हैं तो वो भी आप मुझसे कर सकते हैं, या फिर आपके अंदर कोई और भी कलाकार है तो इसके बारे में भी आप मुझसे बात कर सकते हैं, और हमें पसंद आएगा कि अगर आप अपनी कला हमसे साझा करेंगे। वहीं आपको बता दूं कि अब आपका जो रेडियो है आजाद हिंद रेडियो, वो बहुत सारे सोशल हैंडल्स पर मौजूद है, यानी कि आप जा सकते हैं इंस्टाग्राम पर और साथ ही साथ आप जा सकते हैं मेटा पर भी, जिसको आप फेसबुक के नाम से भी जाना करते हैं। वहीं आप जा सकते हैं एक्स पर, तो आप जा सकते हैं यूट्यूब पर भी। लेकिन एक और प्लेटफॉर्म है जहां पर हम आपको दुनिया के किसी भी कोने में से मिल सकते हैं, वो है आपका प्ले स्टोर। आपको जाना होगा अपने प्ले स्टोर पर और हमारा मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना होगा, जिसको इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। बच्चा तलक भी इसको इंस्टॉल कर सकता है, और हमसे जुड़ जाइए और यूं ही सुनते जाइए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। फिलहाल आपको जोड़ूंगी इस बहुत ही प्यारे से गाने के साथ, उसके बाद आई विल बी बैक टू यू विद बहुत सारी बातें। कहीं मत जाइएगा मेरे दोस्तों।

0: सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: वेलकम बैक टू आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। दोस्तों, ढेर सारी बातें आपसे कर रही हूँ। प्रोग्राम चल रहा है सेहत सखी और संसार, ढेर सारी बातें आपके साथ चल रही हैं और मैं आपको बता रही हूँ कुछ डेली होम केयर रूटीन में आप किस तरीके से अपनी स्किन की केयर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्लींजिंग के बारे में, टोनिंग के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और साथ ही साथ हमने बात की मॉइस्चराइजिंग के बारे में भी। लेकिन एक और चीज है जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, वो है

आपकी सनस्क्रीन। भले ही आसमान में बादल हो, सूर्य की जो हानिकारक यूवी किरणें होती हैं वो मैं आपको बता दूं हमेशा ही आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में होती हैं। तो आपको सेहतमंद रखने के लिए यानी कि अपनी स्किन को सेहतमंद रखने के लिए जेल सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपकी जो स्किन है वो ऐसी चमकती रहे और उसको कोई किसी प्रकार की डैमेज ना होने पाए। इसी के साथ आपको बता दूं कि आप ना बहुत सारे फेस पैक्स भी ऑप्ट कर सकते हैं। इसके बारे में हमने पहले भी कई बार बातें की हैं, लेकिन फेस पैक्स हमारे पास इतने सारे हैं कि जिसके बारे में अगर मैं आपको रोजाना भी थोड़ा थोड़ा बताऊं तो वो नहीं, अभी इतनी जल्दी तो बिल्कुल भी नहीं खत्म होने वाले। फिलहाल आपको बताऊंगी शहद और पपीता किस तरीके से आपकी बेजान और रूखी त्वचा के लिए अच्छा होता है। अब इसका पैक आप कैसे बना सकते हैं, आपको चाहिए 2 चम्मच मैश किया हुआ पका हुआ पपीता, क्योंकि ये आपके पेट के लिए भी अच्छा होता है। तो आप बाकी जो आपका पपीता बचेगा उसको खाने के लिए भी उपयोग में ला सकते हैं। वहीं ये बच्चों के पेट के लिए भी अच्छा होता है, तो उनको भी आदत डलवाइए अपने बच्चों को, और उसके बाद फेस पैक पर आइएगा, क्योंकि जनाब अंदरूनी शरीर को स्वस्थ रखना है और साथ ही साथ बाहरी शरीर को भी आपको सुंदर रखना है। तो इसलिए आपको चाहिए 2 चम्मच मैश किया हुआ पका हुआ पपीता और 1 चम्मच शहद। अब इसे क्या करना है, आपको इसको चेहरे पर लगाकर कम से कम 20 मिनट के लिए आपको छोड़ देना है। पपीते के नेचुरल एंजाइम्स जो होते हैं वो आपकी डेड स्किन को निकाल देते हैं, हटा देते हैं, और शहद क्या करता है आपकी स्किन को नमी देता है। वहीं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोगों को शहद सूट नहीं करता है, तो ये आपके ऊपर है, आपको अप्लाई करने से पहले उस चीज को देख लेना होगा, परख लेना होगा कि कहीं शहद से आपकी स्किन रिएक्ट न कर जाए, है ना। फिलहाल चलिए बहुत सारी बातें हैं जो मुझे आपसे करनी है, करूंगे सारी के सारी, बट मीन वाइल एंजॉय करेंगे ये अपकमिंग गाना, उसके बाद आई विल बी बैक टू यू, कहीं मत जाइएगा दोस्तों, इसी के साथ ये गाना आप लोगों के नाम।

0: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA Honors Hindi, BA Honors English, MA Hindi, MA English। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC NET, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन्स के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।

0: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
1: दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
2: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
1: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
3: ये है आजाद हिंदू रेडियो 90.0 FM।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: यू आर लिसनिंग टू आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। वेल दोस्तों, बहुत सारी बातें आपसे कर रही हूँ और इसी के साथ चलिए कुछ एडवांस डर्मेटोलॉजिस्ट ट्रीटमेंट्स के बारे में आपको बता देती हूँ। असल में आजकल क्योंकि हम इतने ज्यादा व्यस्त हो गए हैं, इतने ज्यादा बिजी शेड्यूल में रहते हैं कि हमें ना अपनी स्किन का ध्यान रखने के लिए कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आप सेल्फ केयर करते हैं तो वो आपका स्वार्थ नहीं है, क्योंकि वो आपकी जिम्मेदारी भी है और आपका अधिकार भी है। इसीलिए सभी को अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए और अपने लिए कम से कम दिन में आधा घंटा तो जरूर निकालना चाहिए, फिर चाहे वो हमारी माताएं हो, बहनें हो या फिर हमारे भाई जन हो। इसी के साथ दोस्तों आपको बता देती हूँ कि आप किस तरीके से अपनी स्किन को और भी ज्यादा बेहतर और अच्छे से रख सकते हैं। असल में आप बहुत सारे ट्रीटमेंट्स को प्रेफर कर सकते हैं। सबसे पहला ट्रीटमेंट जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है केमिकल पील्स। अब इसमें क्या होता है, इसमें ना होता है सैलिसिलिक एसिड और साथ ही होता है ग्लाइकोलिक एसिड। इसकी मदद से त्वचा की ऊपरी जो डेड स्किन होती है, जो डेड लेयर होती है, वो उसको निकालने में हेल्पफुल होता है। और आपको बता दूं कि ये क्या करता है, ये जो आपके रोम छिद्र हो जाते हैं ना, जो बंद हो रखे होते हैं ऑलरेडी, उनको तुरंत खोलता है और मुहासों को आने से भी रोकता है। तो ये एक ऐसा ट्रीटमेंट जो आपकी स्किन को तंदुरुस्त रखने के लिए होता है। वहीं हाइड्रोफेशियल क्या होता है इसके बारे में भी आपको बताऊंगी, लेकिन लेकिन लेकिन जनाब उसके लिए लगेंगे कुछ गाने और थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा इंतजार। चलिए इस गाने को एंजॉय करेंगे और उसके बाद आई विल बी बैक टू यू। कहीं मत जाइएगा दोस्तों, ऐसे ही सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। मुझसे जुड़ जाइए हमारे सोशल हैंडल्स के माध्यम से और साथ ही साथ आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे कॉन्टेक्ट नंबर यानी के 9639012111 के माध्यम से भी। फिलहाल ये गाना आपके लिए, उसके बाद आई विल बी बैक टू यू। कहीं मत जाइएगा मेरे दोस्तों।

0: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश लें स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: बीए ऑनर्स हिंदी, बीए ऑनर्स इंग्लिश, एमए हिंदी, एमए इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा एआई आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, यूजीसी नेट, जीआरएफ तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, एचपी पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
3: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
2: दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
4: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
2: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM RJ वंशी के साथ।
1: वेल वेल वेल वेलकम बैक टू आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। दोस्तों ढेर सारी बातें आपसे कर रही हूँ और इसी के साथ प्रोग्राम चल रहा है सेहत सखी और संसार मेरे यानी आरजे वंशी के साथ। कुछ बातें आपसे करती हूँ इस प्रोग्राम में जो हो जाती है संसार से रिलेटेड, तो वहीं कुछ बातें आपसे करती हूँ जो होती है आपकी सेहत से रिलेटेड, वहीं कुछ बातें होती है जो होती है हमारी सखियों से, और कुछ ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स आपको बताती हूँ जो आपकी लाइफ को और भी ज्यादा सिंपल और सॉर्टेड कर देता है ना। तो कुछ ऐसे ही टिप्स आपसे साझा करती हूँ। वहीं अगर आपको कुछ कहना है, कुछ बताना है, तो बिल्कुल आप मुझसे जुड़ सकते हैं। नंबर बहुत ही आसान सा है हमारा 9639012111। इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं सुबह 9 बजे से 1 बजे तक, बिल्कुल लाइव आपसे बातें होती हैं। तो इस दौरान आप फरमाइशें भी कर सकते हैं किसी गाने की, और साथ ही साथ किसी गाने को आपको किसी को डेडिकेट करना है तो वो भी आप जरूर कर सकते हैं। कुछ अच्छा लिखना जानते हैं तो वो भी आप मुझसे कर सकते हैं, या फिर आपके अंदर कोई और भी कलाकार है तो इसके बारे में भी आप मुझसे बात कर सकते हैं, और हमें पसंद आएगा कि अगर आप अपनी कला हमसे साझा करेंगे। वहीं आपको बता दूं कि अब आपका जो रेडियो है आजाद हिंद रेडियो, वो बहुत सारे सोशल हैंडल्स पर मौजूद है, यानी कि आप जा सकते हैं इंस्टाग्राम पर, और साथ ही साथ आप जा सकते हैं मेटा पर भी, जिसको आप फेसबुक के नाम से भी जाना करते हैं। वहीं आप जा सकते हैं एक्स पर, तो आप जा सकते हैं यूट्यूब पर भी। लेकिन एक और प्लेटफॉर्म है जहां पर हम आपको दुनिया के किसी भी कोने में से मिल सकते हैं, वो है आपका प्ले स्टोर। आपको जाना होगा अपने प्ले स्टोर पर और हमारा मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना होगा, जिसको इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। बच्चा तलक भी इसको इंस्टॉल कर सकता है, और हमसे जुड़ जाइए और यूं ही सुनते जाइए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। फिलहाल आपको जोड़ूंगी इस बहुत ही प्यारे से गाने के साथ, उसके बाद आई विल बी बैक टू यू विद बहुत सारी बातें। कहीं मत जाइएगा मेरे दोस्तों।

0: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
1: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
2: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC नेट, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
1: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
0: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी, उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405। जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 2400 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।
3: मैं उसके लिए मर चुकी हूँ।
4: वो भी आपकी यादों में पल पल मर रहा है।
3: तो कह दो उसे कि उन यादों की चिता बना के जला दे।
4: उस चिता से उठता धुआं भी आपके प्यार का ही होगा।

0: आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM RJ वंशी के साथ।
1: एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और दोस्तों, आज ना ढेर सारी बातें आपसे हो रही हैं, बता रही हूँ कुछ ऐसे ट्रीटमेंट सभी आपसे जो आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली नेचर के हो जाते हैं। आप सुन रहे हैं सेहत सखी और संसार मेरे यानी आरजे वंशी के साथ। और अभी तक हमने बातें की आप केमिकल पील्स का भी सहारा ले सकते हैं और साथ ही साथ हाइड्रा फेशियल भी करा सकते हैं। अब ये क्या होता है और क्यों ये फायदेमंद होता है, चलिए इस पर बात कर लेते हैं। असल में हाइड्रोफेशियल एक डीप क्लींजिंग और हाइड्रेटिंग थेरेपी है और इसका फायदा ये हो जाता है, कई बार ना ऐसा होता है कि हमारी त्वचा पर चिपचिपी गंदगी जो है वो जमा हो जाती है और आपको जरूरत पड़ती है कि आप गहराई से अपनी स्किन को साफ करें। तो यही काम हाइड्रोफेशियल करता है, ये गहराई से आपकी त्वचा को साफ करता है और उसको ग्लोइंग बना देता है ना, कमाल की बात। वहीं बात करें अगर डर्माब्रेशन के बारे में, तो असल में इसके अंतर्गत क्या होता है, एक मशीन होती है जिसकी हेल्प से आपके चेहरे को धीरे से एक्सफोलिएट किया जाता है। यानी कि इसका फायदा हो जाता है कि जो भी आपके स्किन पर ब्लैक हेड्स होते हैं या फिर व्हाइट हेड्स होते हैं, ये उनको पूरी तरीके से साफ कर देता है और आपकी स्किन को चमकदार और भी ज्यादा खूबसूरत बना देता है। वेल, इसी के साथ और क्या बातें हैं जो मुझे आपसे करनी है, करूंगी सारी के सारी, बट अभी हम एंजॉय करेंगे कुछ और उसके बाद आई बी बैक टू यू। कहीं मत जाइएगा मेरे दोस्तों, कुछ कहना है कुछ बताना है तो बिल्कुल मुझसे साझा कर सकते हैं। नंबर बड़ा आसान सा है मेरा 9639012111, और चाहे तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भी वॉइस नोट भेज सकते हैं। फिलहाल मैं भेजूंगी आप तक ये बहुत ही प्यारा सा गाना, कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट।

0: ये है आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।
1: अरे अरे अरे ना ना ना ना ना ना ना, ना।

0: नमस्ते, मैं हूं दीपक सैनी, स्टैंड अप कॉमेडियन।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूं। आजाद हिंद रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और फ्री में देता हूं।
2: दोस्तों आप यही सुनते जाइए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। जय हिंद, जय भारत।

0: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC नेट, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण। अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

0: सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आरजे वंशी के साथ।
1: जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। दोस्तों, ढेर सारी बातें आपसे कर रही हूँ। प्रोग्राम चल रहा है सेहत, सखी और संसार। और दोस्तों, हमने ऑलरेडी बहुत सारी बातें साझा की हैं। 9 बजे से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और इतनी सारी बातें आपसे करती हूँ। और आपके बीच जब कॉल से मैसेज आते हैं तो मुझे बेहद खुशी होती है कि हाँ, मेरा जो प्रोग्राम है वो सुना जा रहा है और आप तक मेरी बात पहुँच पा रही है। और खुशी इस बात की होती है कि आपकी बातें भी मुझ तक पहुँच हैं, आपकी फरमाइशें भी मुझ तक पहुंचती हैं, तो एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही मोटिवेशन का हम अनुभव करते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी मैं आपसे कहूंगी कि अभी ना मेरा होचला है आपसे इजाजत लेने का समय, क्योंकि अगले प्रेजेंटर आते ही होंगे, उन्हें भी आपसे ढेर सारी बातें करनी है ना, तो इसलिए उनके लिए कुर्सी मुझे खाली करनी होगी, जाना होगा स्टूडियो के बाहर, ताकि अगला प्रेजेंटर आए, अपने प्रोग्राम को प्रेजेंट करे और आपसे ढेर सारी बातें करे, है ना। तो इसी के साथ मैं यही कहूंगी चलते चलते कि अपनी सेहत का ध्यान रखें, खाना पीना जो है अपना सेहतमंद रखें, ऐसा खाना ना खाएं जिससे कि आपकी हेल्थ पर कुछ गलत प्रभाव पड़े या आपके बच्चे बीमारी की चपेट में आ जाए। क्योंकि हम स्वाद के चक्कर में कुछ ऐसी चीजें भी खा लेते हैं जिसका बाद में जो परिणाम होता है वो फिर हमसे देखा नहीं जाता। तो इसलिए अपने खाने पीने का ध्यान रखें, पानी खूब पिए, और हो सके तो जब भी आपको लगे कि आपकी तबीयत थोड़ी सी नासाज है तो आप उबला हुआ पानी भी ऑप्ट कर सकते हैं या प्योरीफायर का भी आप पानी ऑप्ट कर सकते हैं, अगर आप हार्ड वाटर पीना प्रेफर करते हैं तो। और साथ ही साथ मैं यही कहूंगी आपसे कि जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो ट्रैफिक नियमों का जरूर पालन करें, क्योंकि आपकी छोटी सी सावधानी आपके इस अमूल्य जीवन की रक्षा कर सकती है और दूसरे के जीवन की भी रक्षा कर सकती है। सतर्क होकर चलें और सुरक्षित होकर चलें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, सुरक्षित रहिए और ऐसे ही मस्त रहिए। फिलहाल जाते जाते छोड़कर जाऊंगी आपके लिए बहुत ही प्यारा सा गाना, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और मैं आपसे मिलूंगी कल इसी समय और इसी प्लेस पर और बहुत सारी बातों के साथ। फिलहाल बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।

0: भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं, तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA Honors Hindi, BA Honors English, MA Hindi, MA English। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC NET, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन्स के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
3: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।
4: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। प्रिय अस्पताल किठोर में,
5: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
4: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिलें 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड, किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
6: ये है आजाद हिंदू रेडियो 90.0 FM।

0: नमस्ते, मैं हूं दीपक सैनी, स्टैंड अप कॉमेडियन।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूं। आजाद हिंद रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और फ्री में देता हूं।
2: दोस्तों आप यही सुनते जाइए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। जय हिंद, जय भारत।

0: यू आर लिसनिंग आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।
1: अरे अरे अरे रुको, क्या कर रही हो?
0: क्या कर रही हो मतलब रात का बासी पानी फेंक कर ताजा पानी भर रही हूँ।
1: रात का बासी पानी?
0: जी, अब पीने के लिए तो ताजा पानी भरना ही पड़ेगा ना।
1: तुम्हें पता भी है देश के ना जाने कितने हिस्सों में लोगों को ऐसा पानी नसीब नहीं होता, वो सड़ा हुआ गंदा पानी पीने को मजबूर है, और तुम कहती हो बासी पानी। एक दिन में थोड़ी पानी खराब होता है।
0: तो फिर कैसे किया जाए?
1: इस पानी का जहाँ हो सके उपयोग किया जाए, और इस तरीके से फेंका या बहाया तो बिल्कुल ना जाए।
2: क्योंकि ऐसा करना पानी को उड़ेलना नहीं है, बल्कि अपने भविष्य के साथ खेलना है। जल है तो कल है, पानी बचाइए, भविष्य बनाइए।
3: सुभारती विश्वविद्यालय और आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM द्वारा जनहित में जारी।

जय हिंद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन, जिनके कारण हम सभी आजाद हुए। आइए हम सब मिलकर गाएं आजाद हिंद गान और करें देश के सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन। जय हिंद।

0: जय हिंद, नमस्कार। आपका स्वागत है सुबह भारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और आज के इस खास कार्यक्रम में आप पहुंचे हैं हमारे साथ हमारे आज के खास मेहमान जूनियर सनी देओल साहब के नाम से जाने जाने वाले मेरठ के जाने माने कलाकार, जिन्होंने हमारी टीवी इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छा काम किया है। कपिल शर्मा शो से लेकर अन्य जो टीवी जो प्रोग्राम्स आते हैं वहां पर भी अपनी छाप और धमक फैलाते हैं और मेरठ के तमाम बड़े कार्यक्रम भी करते रहते हैं। मुंबई से अच्छे अच्छे बड़े बड़े कलाकारों को भी ये बुलाते हैं। मेरठ का जाना माना नाम बन चुके हैं जूनियर सनी देओल साहब यानी राजीव कुमार जी। सर, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे स्टूडियो में।
1: जी नमस्कार।
0: तो राजीव जी, मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को अपने स्टाइल में अपना परिचय दें जो पहली बार आपको सुन रहे हैं या देख रहे हैं।
1: देखिए, आप सभी को नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। और मैं राजीव कुमार जूनियर सनी देओल टीवी आर्टिस्ट, और आज मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज मैं आजाद हिंद रेडियो सुबह भारती एफएम में पहुंचा हूं, और बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा जी का, जो कृष्णा जी ने मुझे मौका दिया है यहाँ पर आने का। और
0: जी सर, देखिए, ये हमारे लिए मेरठ वालों के लिए बहुत अच्छी बात है कि कपिल शर्मा शो में भी जो आपने धमाल मचाया और आप ऐसे बहुत सारे टीवी प्रोग्राम्स में भी आते रहते हैं। मैं चाहता हूँ हमारे श्रोताओं को एक बार आप उन काम के बारे में भी बताएं कि आप कब कब किस किस प्रोग्राम्स में आए हैं और आने वाले कौन कौन से आपके एपिसोड वगैरह होंगे।
1: देखिए, आर्टिस्ट के तौर पर मैं बताऊं कि 2006 में मैंने लैपटॉप चैलेंज किया था
0: जी।
1: उसके बाद कॉमेडी सर्कस सोनी चैनल पे, रिसेंटली कपिल शर्मा शो, मैडनेस मचाएंगे, इंडिया को हंसाएंगे, और अभी रिसेंटली 2-3 महीने पहले ही लाफ्टर शेप में नजर आया था मैं कृष्णा सुदेश भाई के साथ में। तो शो चलते रहते हैं, और अभी रिसेंटली जो मेरी अपनी कंपनी है सनी एंटरटेनमेंट ग्रुप
0: जी,
1: जिस कंपनी के बिहाफ पे मैं मेरठ में सेलिब्रिटीज लाता हूँ और कलाकारों को मंच देता हूँ, चाहे वो सिंगर्स हो, एंकर हो, या फिर कोई अच्छे आर्टिस्ट हो, कलाकार हो
0: जी।
1: तो इस टाइप के शो करता हूं। लेकिन खास बात क्या है कि इस बार हम लोग आने वाले 2 अक्टूबर श्री गांधी जयंती के शुभ अवसर पे हम लोग एक शो मेरठ में, एक देशभक्ति शो लॉन्च किया है, जो आने वाले 30 सितंबर को आयोजित किया जा रहा है होटल कॉन्वे शॉपिंग मॉल मेरठ में। संदेश से आते हैं
0: जी,
1: ये नाम मैंने इसलिए रखा क्योंकि फिल्म थी बॉर्डर
0: जी,
1: उसका एक गाना था संदेश से आते हैं।
0: हाँ।
1: तो मैंने उन्हीं के कलाकार को चुना कि मैं शो में उनके कलाकार को बुलाऊं, जैसे कि सुदेश बेरी साहब मेरठ में पहले। हाँ। तो मैंने उन्हीं के कलाकार को चुना कि मैं शो में उनके कलाकार को बुलाऊं, जैसे कि सुदेश बेरी साहब मेरठ में पहली बार आ रहे हैं, जिन्होंने बॉर्डर फिल्म में मथुरा दास जी का किरदार निभाया था, जिन्हें सनी देओल साहब छुट्टी के मामले में डांटते हैं
0: जी जी,
1: वो डायलॉग भी मैं सुनाऊंगा आपको
0: जी।
1: जब वो डांटते हैं तो वो किरदार है सुदेश बेरी साहब का, जिन्होंने सनी देओल साहब के साथ कई फिल्में की हैं, जैसे कि जोशीले, हिम्मत, घायल, मातुजे सलाम और बॉर्डर, पांच फिल्मों में सनी देओल साहब के साथ में काम किया है।
0: और उनके पुराने जमाने के वो सीरियल भी बड़े फेमस रहे, बहुत अच्छे अच्छे
1: सुराग जो सीरियल था वो दूरदर्शन पे आता था
0: जी।
1: लेकिन मुझे अभी जानकारी मिली है, सुदेश बेरी साहब ने जो जानकारी दी है कि दूरदर्शन पे सेकंड यानी कि सेकंड पार्ट
0: जी
1: अभी स्टार्ट होने वाला है, शूटिंग चल रही है।
0: अच्छा।
1: उसका पोस्टर भी लॉन्च कर दिया सुदेश बेरी साहब ने, सुराग फिर से एक बार, फिर वो सीआईडी इंस्पेक्टर बनके हम लोगों को नजर आएंगे।
0: क्या बात है।
1: तो आने वाले 30 तारीख को हम मिलेंगे सुराग के सुपरस्टार कलाकार, घायल के सनी देओल साहब के दोस्त, और बॉर्डर फिल्म के मथुरा दास सुदेश बेरी साहब से आने वाले 30 सितंबर को होटल कॉन्वे शॉपिंग मॉल मेरठ में एक अद्भुत देशभक्ति प्रोग्राम संदेश से आते हैं।

0: दौर के बारे में थोड़ा बताएं, और किस बात ने, किस सोच ने आपकी सबसे बड़ी हिम्मत बढ़ाई, और वो कौन लोग थे जिन्होंने आपको टीवी के बड़े मंच तक भी पहुंचने में मदद की?
1: कृष्णा जी, कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन क्या है कि मैं इसे शॉर्ट में बताऊंगा
0: जी।
1: मैं एक पेट्रोल पंप पे नौकरी करता था।
0: पेट्रोल पंप पर
1: जी, तेल डालता था मैं पेट्रोल पंप पे, सेल्समैन था।
0: अच्छा,
1: मेरठ में ही हमारा पेट्रोल पंप है
0: जी,
1: मैं काम करता था मोकमपुर में, आदरणीय हरीशपाल जी का पेट्रोल पंप है, पूर्व सांसद थे मेरठ के, उसमें मैं काम करता था। तो मेरी तीन सिस्टर थी, छोटे भाई है मेरे, मम्मी पापा, तो हम एक रेंट के मकान पर रहते थे उस टाइम पे। ये मतलब मैं आपसे 26 साल पुरानी बात बता रहा हूँ
0: जी।
1: तो बस वक्त बीतता गया, समय चलता रहा। डीएन कॉलेज में मैं छठी क्लास में पढ़ता था, तब मैंने नरसिम्हा मूवी देखी थी
0: जी,
1: 98 में, सनी देओल साहब की। बस वहीं से ही सनी देओल साहब को देखा। जिंदगी में कोई रोजगार नहीं था आगे बढ़ने का, सिर्फ नौकरी थी। भगवान का, उस परमेश्वर का, जीसस का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे आगे बढ़ने का मौका दिया। मेरे गले में वो आवाज दी, जिस आवाज की वजह से आज मेरी रोजी रोटी चलती है।
0: यहाँ पर मैं चाहूंगा कि आप एक बार देओल साहब की आवाज में ही कुछ एक डायलॉग भी,
1: मैं आपको वही डायलॉग सुनाऊंगा जो मैंने कपिल शर्मा शो में भी आदरणीय गुरु सनी देओल साहब के सामने बोला था, और उसी डायलॉग से मेरी शुरुआत हुई थी। फिल्म थी नरसिम्हा, तो ये डायलॉग मेरी जिंदगी का बड़ा अहम डायलॉग है, मेरा ही नहीं सनी देओल साहब का भी। आपने देखा होगा कपिल शर्मा शो, जब मैं इस डायलॉग को बोल रहा था तो सनी देओल साहब बड़े ध्यान से सुन रहे थे
0: जी।
1: आदरणीय ओमपुरी साहब के सामने ये डायलॉग था सनी देओल साहब का कि बस बाप जी, आज के बाद आपकी नमक की गुलामी खत्म, और अब ये जंग शुरू होती है। ये जंग इसलिए नहीं कि वो परिवार इस शहर में रहता है या नहीं, ये जंग फैसला करेगी ये शहर आपका है या इस शहर के रहने वालों का। ये जंग फैसला करेगी इस शहर का हर एक नौजवान, आप जैसे बापजी की कठपुतली है या इस शहर का मुकद्दर। आप अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए उस परिवार को इस शहर से निकालने की, और मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा उस परिवार को इस शहर में रखने की। मुझे कसम है इस शहर के हर एक नौजवान की, बापजी मैं मर जाऊंगा लेकिन दूसरा नसीब में पैदा होने नहीं दूंगा।
0: क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त, बहुत जबरदस्त।
1: हाँ, ये डायलॉग था मेरी लाइफ का, और इसी डायलॉग ने मेरी जिंदगी को सुधार दिया। पहला इंटरव्यू दैनिक जागरण में मेरा निकला था, आदरणीय हमारे सर दिनेश दिनकर जी,
0: जी।
1: दैनिक जागरण से, और अमित जानी जैन भैया, सॉरी, उन्होंने मेरे निकाला था इंटरव्यू। तो तभी से ही, फिर उसके बाद लास्ट कपिल शर्मा शो किया, सनी देओल साहब से मुलाकात हुई। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उन टीवी चैनल के अधिकारियों का जिन्होंने मुझे काम दिया, जिसमें मैं दो नाम लेना चाहूंगा
0: जी।
1: जिसमें सबसे पहला नाम लैपटॉप चैलेंज के जो मालिक थे
0: जी,
1: आदरणीय पंकज सर।
0: अच्छा,
1: भगवान उन्हें हमेशा खुश रखे, उन्होंने मुझे जीवन का पहला मौका दिया था। पंकज सर प्रोड्यूसर थे लैपटॉप चैलेंज के।
0: अच्छा,
1: देवा सर कैमरामैन थे, और हमारे डायलॉग के राइटर थे राजीव धीमरा जी।
0: अच्छा,
1: राजीव धीमरा जी कपिल शर्मा शो के राइटर हैं पूरे शो के
0: जी।
1: स्टार्टिंग का जो कपिल शर्मा शो था उन्होंने पूरा किया था, और मेरे जो अजीज, मेरे जो प्रिय मित्र जिन्होंने कॉमेडी सर्कस कपिल शर्मा शो मुझे दिलाया, जयंत कुमार सिंह भैया, उनका बहुत बड़ा प्यार है, जीवन है। दूसरे जिन्होंने मुझे भी रिसेंटली अमीषा पटेल के साथ मैडनेस मचाएंगे इंडिया को हंसाएंगे शो दिया, और अभी रिसेंटली लैपटॉप सेव किया, आदरणीय एनपी सर, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तीन शख्स मेरे लाइफ में ऐसे हैं, समझ लीजिए कि मैं इन्हें ही भगवान का अवतार और फरिश्ता समझता हूँ सर।
0: ऐसे लोग जो बुरे टाइम में या हमारी मदद करते हैं, जो हौसला अफजाई करते हैं, वो यकीनन भगवान के ही दूत होते हैं, उन्हीं के भेजे होते हैं। तो और आज भी आप उनको क्रेडिट दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है सर।
1: लेकिन मैं उन लोगों का नाम भी लेना चाहूंगा कृष्णा जी, जो मेरे मेरठ शहर से थे, जिन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया था
0: जी।
1: मेरे तीन दोस्त थे जो कपिल बेदी थे, उनका कोरियोग्राफी थे बहुत अच्छे, एक एक्टर थे मेरठ के करण रोहेला, ये दोनों इस दुनिया में नहीं रहे।
0: अच्छा,
1: बहुत अच्छे कलाकार थे, मुझे बहुत दुख है, मैं आज भी ईश्वर से दुआ करता हूँ दोनों हमेशा जहाँ भी रहे खुश रहे। जोनी भाई थे मेरे, एक बहुत अच्छे मित्र थे, वो भी है, वो तो जिंदा है, शास्त्री नगर में रहते हैं वो, उनसे मैं बहुत कम मिलता हूँ, लेकिन दोनों का मुझे बहुत दुख है। और भी मेरे जीवन में बहुत ऐसे लोग थे जिन्होंने मेरा फाइनेंशियली मेरी बहुत मदद की। अमर उजाला के संपादक थे राजेंद्र सिंह जी, उन्होंने मेरी बहुत मदद की
0: जी।
1: राजीव खैरे थे, एक बैंक में जॉब करते थे सर, तो इन सब लोगों ने मेरी बहुत मदद की, बहुत हेल्प की, मैं इनका बहुत एहसानमंद हूँ। और आज भी

0: मैं ईश्वर से दुआ करता हूँ ये सब लोग जहां भी रहे खुश रहे। ये जो फंक्शन है, वैसे तो मैं इस फंक्शन को 5 साल से कर रहा हूँ, और जो मेरी कंपनी है सनी एंटरटेनमेंट ग्रुप, 17 साल आने वाली 20 मई को 17 साल हो जाएंगे, 16 साल हो चुके हैं। तो ये जो देशभक्ति प्रोग्राम है संडे से आते हैं, इसे मैं 5 साल से कर रहा हूँ
1: जी,
0: और होटल कॉनवे में कंटिन्यू कर रहा हूँ, शॉपिंग मॉल मेरठ में। तो इस बार कुछ अलग है, नया है, क्योंकि गांधी जयंती भी है इस समय, तो आदरणीय गांधी जयंती के शुभ अवसर पर यह प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। संडे से आते हैं, और इसमें एक बड़ी अहम बात है कि ये फिल्म बॉर्डर के टाइटल सॉन्ग संडे से आते का ये शो है, संडे से आते हैं, और उसी फिल्म के कलाकार सुदेश बैरी साहब जिन्होंने मथुरा दास जी का किरदार निभाया था, वो इसमें मेहमान कलाकार के रूप में आ रहे हैं, और इसमें एक बहुत बड़ा किरदार भी जुड़ा है अभी फिलहाल, जो मेरे प्रिय जी जिन्होंने मुझे कॉमेडी सर्कस महासंग्राम और कपिल शर्मा शो में काम दिया था। समझ लीजिए कि कॉमेडी सर्कस और कपिल शर्मा शो के आर्टिस्ट मैनेजमेंट के डायरेक्टर हैं, पूरे शो को डायरेक्ट करते हैं वो। तो वो मेरठ में पहली बार आ रहे हैं, सुदेश बैरी साहब भी पहली बार आ रहे हैं
1: जी।
0: और मेरठ के पुलिस प्रशासन के अधिकारी लोग रहेंगे, और स्कूल्स के स्कूल बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट रहेंगे।
2: ये है मेरठ का नंबर 1 सुबह आरती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव कुमार जूनियर सनी देओल टीवी आर्टिस्ट। और दोस्तों आज मैं पहुंचा हूं आजाद हिंद रेडियो FM सुभारती मेरठ। दोस्तों मुझे यहां कर पता चला कि टीवी की जो बीमारी है उसके बारे में मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूं, कुछ जानकारी देना चाहता हूं आज इस विषय में कि टीवी एक बहुत ही घातक बीमारी है, बहुत ही भयंकर बीमारी है, लेकिन इसका भी इलाज है। हमारे शहर में जितनी भी सरकारी अस्पताल हैं उन अस्पताल में आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, आपको फ्री दवाई भी मिलेगी, आपको फाइनेंशियली हेल्प भी होगी, अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। तो मैं चाहता हूं कि टीवी की बीमारी कोई बड़ी बीमारी नहीं रही, क्योंकि इसके लिए सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। तो आप लोग सरकारी अस्पताल जाएं और इस बीमारी से लड़ें, छुटकारा पाएं, क्योंकि आपको सारी सुविधाएं फ्री मिलेंगी। तो मेरी सभी से हाथ जोड़ के विनती है, प्रार्थना है कि आप लोग किसी को भी टीवी की समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप इसका इलाज फ्री करा सकते हैं सरकारी अस्पताल में। आजाद हिंद रेडियो सुभारती FM मेरठ। धन्यवाद।
1: ये है मेरठ का नंबर 1 सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC NET, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण। अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन्स के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं, कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
3: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
2: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 24 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 24 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
4: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
5: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
4: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
6: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand, Subharti University, Meerut. For more information,

0: Information contact 9759303022.
1: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। शुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। शुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी शुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। दमार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, दमार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर शुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। ये है मेरठ का नंबर 1 शुभारती, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। ओ!

0: जय हिंद, मैं हूँ वास्तु कृष्णा और सुभारती आजाद हिंद रेडियो पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह है आपका अपना वो रेडियो जहाँ पर सिर्फ आम बातें नहीं होती, यहाँ पर बातें होती है खास। इसीलिए हम कहते हैं राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम, जहाँ पर देश सर्वोपरि है, हमारा राष्ट्र सर्वोपरि है। आज का कार्यक्रम बहुत ही स्पेशल है। चलिए मिलकर स्वागत करते हैं मीडिया जगत के जाने माने नाम, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में मीडिया के माध्यम से देश की सेवा की। हमारे आज के खासम खास मेहमान है आदरणीय आरपी सिंह जी। सर, आपका स्वागत है आजाद हिंद रेडियो पर।
1: कृष्णा, आपने बहुत ज्यादा बोल दिया। हम जितने भी हम हैं, मैं तो ये कहता हूं कि भारत में अगर हम लोगों की रगों में जो खून दौड़ रहा है वो देश प्रेम का खून है, और जिस धरती पे हम बैठे हैं वो वैसे भी मेरठ है, और मेरठ जो है वो आजादी की शुरुआत का एक बहुत बड़ा सिग्नेचर है
0: जी।
1: तो मैं तो ये कहता हूं कि मैंने अपने पूरे कैरियर में कई बड़े चैनलों में हम लोगों ने काम किया, लेकिन अगर देखा जाए तो चाहे वो कोई भी हो, मैं कहता हूं कि अगर वो एक रिक्शे वाला भी है
0: जी,
1: वो भी देश सेवा कर रहा है। खास बात आपसे शेयर करने जा रहे हैं जो कि आजाद हिंद रेडियो के लिए या आजाद हिंद रेडियो के लिसनर्स के लिए बहुत ही गर्व का विषय है।
0: जी सर,
1: जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा एक पाकिस्तान का बॉर्डर है अटारी।
0: जी सर,
1: अटारी बॉर्डर जो है वो पंजाब के बिल्कुल लगा हुआ है। इत्तेफाक की बात है, कवर करने कई बार मैं उस बॉर्डर पे गया हूं, मैंने वहां का फ्लैग उतरना और फ्लैग चढ़ाना सब कुछ देखा है
0: जी।
1: लेकिन एक नई न्यूज आई है कि वहां पे हम लोग 360 फीट ऊंचा अपना भारतीय तिरंगा फहराने जा रहे हैं।
0: क्या बात है,
1: और 360 फीट ऊंचा, और वो भी उस जगह जहां अभी तो जैसा आपने देखा एक छोटी सी आंधी ने कितने घर उजाड़ दिए, तो 360 फीट लंबा अगर कोई पोल खड़ा हुआ है तो उसको कम से कम धरती में वो 300-400 फीट अंदर जाना चाहिए
0: जी।
1: तो मैंने देखना शुरू किया कि आखिर में उस फ्लैग के गाड़ा कितना जाएगा, तो बाद में मुझे पता चला कि वो 200 मीटर नीचे फ्लैग गाड़ा जाएगा
0: जी,
1: और फिर उसका पोल इतना ऊपर होगा। तो ये हम सब के लिए बहुत ही प्राउड की बात है, और हम कहते हैं कि हम फिर एक बार बोल सकते हैं कि जय हिंद की सेना जो कि आजाद हिंद थी, बहुत ही आगे भी हम सब भारतीयों के लिए एक प्राइड का विषय होगा।
0: सर, आपने बहुत ही कमाल की जानकारी दी। दोस्तों, हमारे देश का ये झंडा जहां भी लहराएगा हमारी रगों में रवानगी दौड़ा जाएगा। सर, आपने कमाल की जानकारी दी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हमारा आज का कार्यक्रम बहुत ही स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि इस गाता रहे मेरा दिल, जहां पर पुराने जमाने के गाने हमेशा हम गुनगुनाते रहते हैं, और हर कोई सर ये कहता है कि पुराने गानों में जो बात थी वो नए गानों में नहीं होती। इसीलिए आदरणीय आरपी सिंह जी के साथ में हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे गुजरे हुए दौर की, उस जमाने की जो शायद कभी लौट कर तो नहीं आएगा, लेकिन हमारे रेडियो पर हर रोज आप इस कार्यक्रम के माध्यम से उसे गुनगुना सकते हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे एवरग्रीन के बारे में, एवरग्रीन जमाने, वो एक जमाना, वो एक फसाना। सर, उस पुराने जमाने से आज किस सितारे को आप लेकर आए हैं?
1: जैसा कि हमारी आपकी फोन पे बात हुई, आज मैं अपने एक ऐसे सितारे की बात करना चाहता हूं आपके साथ। हो सकता है आप एग्री करें या ना करें
0: जी।
1: जो आपने कहा एवरग्रीन
0: जी,
1: तो एवरग्रीन तो एक ही था जिसको कि मैं कह सकता हूं। हो सकता है कि इसमें भी लोग बोले अरे नहीं भाई, आज तो एवरग्रीन बहुत से लोग हैं
0: जी,
1: लेकिन एवरग्रीन तो एक ही था, वो थे देवानंद।
0: क्या बात है सर,
1: और सच में अगर देखा जाए तो उनको एवरग्रीन हीरो माना जाता था, माना जाता है, और आगे आने वाले समय में भी देवानंद को एवरग्रीन हीरो माना ही जाएगा।
0: जी सर, दोस्तों, अगर आप भी देवानंद साहब के बारे में कुछ जानते हैं और कुछ हमारे साथ में शेयर करना चाहते हैं तो नंबर है हमारा 9639012111। सर, क्योंकि आपने भी वो गोल्डन एरा देखा है, वो जमाने देखे, मैं चाहता हूं कि कार्यक्रम की शुरुआत में देव साहब का कोई गीत जो हम अपने श्रोताओं को सुना सकें।
1: देखिए सबसे ज्यादा अब हम उसकी क्रोनोलॉजी पे चले तो देवानंद के गीत तो मेरे समझ में शायद दिन भर सुने जाए तो भी कम है
0: जी सर,
1: लेकिन क्रोनोलॉजी पे चले तो सब क्रोनोलॉजी को किनारे रख करके हम सबसे पहला गाना हमारे समझ में बजा सकते हैं, गाता रहे मेरा दिल तू ही मेरी मंजिल।
2: गाता रहे,
0: आइए दोस्तों सुनते हैं यही खूबसूरत गीत। देवानंद साहब की बात कर रहे हैं, ये है वो जमाना जो कभी लौट कर नहीं आएगा लेकिन हर रोज हमारे ही साथ रहता है। एवरग्रीन जमाने में आज हमारे मेहमान हैं आदरणीय आर

0: बहुत ही खूबसूरत गीत सुना भी आपने। सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर मैं हूँ वास्तु कृष्णा और हमारे स्टूडियो में आज हमारे मेहमान हैं आदरणीय आरपी सिंह जी, जिन्होंने जिंदगी भर मीडिया में सेवा की है और अभी भी कर रहे हैं। और बात कर रहे हैं आज हम यहाँ पर पुराने जमानों के बारे में, सर गीतों के बारे में, गानों के बारे में और देवानंद साहब की फिल्मों के बारे में तो बात जरूर करेंगे, पर मैं चाहता हूँ कि जब आप युवा थे, आप जवान थे, तब उस समय देवानंद साहब के बहुत सारे गाने हिट हुआ करते थे, वो जुबली कुमार या सिल्वर जुबली उनकी फिल्में हुआ करती थी। कोई किस्सा जो आपको याद आता हो वो बताएं।
1: देखिए, मैं इससे पहले बहुत से किस्से हैं देवानंद के जी, जो कि जब मैं पढ़ता था
0: जी
1: उस समय से लेकर के और शायद अब तक हम लोग उनके बारे में कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं
0: जी।
1: सब कुछ खत्म हो गया बहुत पहले
0: जी,
1: लेकिन हम लोग वो करते रहते हैं। मुझे याद आज भी है जिस जगह हम पढ़ते थे वो एक भारत का बहुत बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, BHU
0: जी।
1: उसके पास ही एक सिनेमा हॉल था, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि इन सब का नाम नहीं लेना चाहिए
0: जी।
1: अगर उसमें देवानंद की फिल्म लग जाती थी तो पहले शो में बनारस का कोई ऐसा आदमी नहीं दिखाई देता था, क्योंकि सबको पता था कि ये जितने BHU के स्टूडेंट हैं पहला शो सब वही देखेंगे।
0: अच्छा।
1: और सब देखते थे।
0: क्या बात है।
1: मेरा तो रिकॉर्ड ये था कि हम लोग अपनी क्लास में टीचर तक को पता रहता था, हमारे प्रोफेसर तक को पता रहता था कि आज सब बंक करने वाले हैं।
0: अच्छा।
1: तो ये देवानंद का क्रेज था।
0: सर उनका क्रेज तो अमेजिंग था और आपने तो वो दौर जिया है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मुझे ये भी बताएं कि हमने सुना है कि देवानंद साहब को काले कपड़े पहनने पर बैन था, पर क्या आपने भी काले कपड़े जवानी के दिनों में सिलवाए थे?
1: कृष्णा देखो, बात एक है
0: जी
1: कि ये बात तो है, बहुत से उस समय भी हम लोग सुनते थे, आज भी हम सुनते हैं। सबसे ज्यादा वेबसाइट पे जहां भी आप देवानंद के बारे में ये करोगे वो निकलेगा, क्योंकि उनका एक क्रेज था। कई लोगों का कहना यह था कि काले कपड़े पहन के जब देवानंद चलते हैं तो लड़कियां गिर जाती हैं। लड़कियां तो वो जब सफेद कपड़े पहन के चलते थे तब भी गिरती थी। देवानंद की एक स्टाइल थी, जैसे अक्सर जब हम लोग जब पढ़ते थे BA में या और भी इंटरमीडिएट में
0: जी,
1: तो बाल पकड़ के टीचर कहते थे ये घोंसले टाइप का बाल करना बंद कर दे, और अगर पढ़ना है तो सीधे बाल छिलवा के आओ,
0: क्योंकि वो देव साहब पफ बनाते थे ऐसे।
1: पफ बनाते थे और उसमें ऐसा लगता था जैसे आज अगर आप लोगों ने, वैसे पता नहीं आप लोगों ने ये सब जिया है कि नहीं जिया है
0: जी,
1: अगर छोटी चिड़ियों के आप घोंसले देखें
0: जी
1: तो बिल्कुल आपको ऐसा ही मिलेगा।
0: जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर।
1: तो वो घोंसले टाइप का उनकी बात होती थी और उनका एक स्टाइल था। जैसे अब आप देखो, एक डायलॉग बिल्कुल जनरल बोलना है
0: जी,
1: उनकी डायलॉग बोलने की क्षमता अलग थी। मेरे समझ में कोई ऐसा डायलॉग उस समय भी नहीं बोल पाता था और आज भी नहीं बोल पाता जो डायलॉग दिलीप कुमार या जो और लोग
0: जी
1: 10 सेकंड में बोलते थे, 20 सेकंड में बोलते थे, वो डायलॉग 5 सेकंड में बोलते थे ना,
0: बहुत स्पीड से
1: बोलते थे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक डायलॉग कहीं से ये निकाल के
0: जी,
1: अगर लिसनर्स को तुम सुना सको।
0: जी मैं जरूर सुनाऊंगा।
2: आप कहां से पधारे हैं और यहां से किधर को सुधारेंगे?
3: आना जाना हमेशा अपने हाथ में थोड़ा ही रहता है दोस्त। इंसान सोचता है मैं उधर चलूं, किस्मत कान पकड़ कर इधर ले जाती है, सोचता है इधर चलूं, नाक पकड़ कर उधर घसीट लेती है।
2: आपके वचन पत्थर की लकीर है।
3: तंग आकर एक दिन मैंने किस्मत के पास बुलाया और पूछा कि बता तू चाहती क्या है?
2: अच्छा।
3: कहने लगी मन मानी छोड़ो, मेरी उंगली पकड़ के चलो। ठीक है, मैंने कहा तथास्तु, तो देख लो भैया, आज यहाँ कल वहाँ परसों कहाँ।
2: सत्य वचन।
4: भगवान से क्या मांग रही थी
5: पहले तुम बताओ।
4: मैंने भगवान से तुम्हें मांग लिया।
5: बस
4: सब कुछ प्रभु से मांग लिया, तुझको मांग कर उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद।
1: और साथ में अब हम लोगों की बात तो बहुत दिन से, बहुत देर से हो रही है
0: जी,
1: तो थोड़ा सा एक बढ़िया सा गाना सुना दो।
0: आइए दोस्तों सुनते हैं देवानंद साहब का ये गाना, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया।
6: मैं जिंदगी

0: देवानंद साहब की बात कर रहे हैं और हमारे स्टूडियो में बैठे हैं आर पी सिंह जी। देखिए मैं कोशिश कर रहा था देव साहब की तरफ बोलने की, लेकिन वैसे तो नहीं हो सकता क्योंकि वो तो वाकई में कमाल थे। दोस्तों हम यहाँ पर देवानंद साहब की बात करें, हमारे स्टूडियो में आदरणीय आर पी सिंह जी हैं। सर मैं चाहता हूँ कोई किस्सा आप हमारे श्रोताओं को देव साहब का बताएं।
1: देखिए गाने ही गाने का प्रोग्राम है, हो सकता है किस्सा सुनने में लोग इंटरेस्टेड ना हो, लेकिन फिर भी एक किस्सा फटाफट सुनाता हूँ
0: जी।
1: मेरे भी जैसा मैंने पहले ही कहा कि हम सब के प्यारे हीरो देवानंद थे
0: जी,
1: और अगर एक बार किसी को मौका मिल जाता था, हम सब चाहे मतलब न्यूज वालों को भी
0: जी,
1: तो देवानंद से मिलना नहीं चूकते थे।
0: अच्छा आप मिले थे सर?
1: मेरी इत्तेफाक की बात है कि मैं एक बार मतलब उनके साथ मैं प्लेन पे सफर किया।
0: अच्छा।
1: और दो बार हम लोग मिले।
0: क्या
1: वो भी इंटरव्यू के लिए
0: जी।
1: अब वो अलग अलग किस्से हैं
0: जी।
1: अब जैसे कैसे प्लेन में हम लोग मिले, बॉम्बे से गोवा की फ्लाइट थी, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि इसमें ये फिल्म क्रू भी चलेगा, और हम लोग तो दिल्ली से गए थे, गोवा के मतलब बॉम्बे एयरपोर्ट पे बैठे हुए थे, सुबह अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी
0: जी।
1: हम सब लोग बस मतलब जिसको कहो कि उनीदे से कुछ मतलब चिढ़े हुए से।
0: अच्छा।
1: सब लोग बैठे हुए थे कि भाई अब चले
0: जी,
1: तो शायद सुबह 5 या कितने बजे की फ्लाइट थी
0: जी,
1: हम लोग तो जाके बैठ गए। बाद में पता चला कि प्लेन तो आधा खाली है।
0: अच्छा।
1: फिर एकदम से सारे लोग आए, उसमें बिजनेस क्लास में हमारे हीरो साहब देवानंद भी बैठे हुए थे
0: जी,
1: और एकदम से पूरे प्लेन में ये बात लोगों ने करनी शुरू करी, अरे देवानंद देवानंद देवन। हम लोगों ने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, चलो कम से कम बहुत 40-50 मिनट की फ्लाइट लेकर एक साथ तो है
0: जी, जी, जी।
1: अब इत्तेफाक की बात ही कृष्णा, उस समय कैमरे जो थे, खैर हमारे साथ तो कैमरे भी थे, लेकिन असली बात ये थी कि हम लोगों के पास स्टिल कैमरे नहीं थे। आज तो भगवान ने जिसको कहो कि जिसको कहिए कि मुट्ठी में जो ये जो हमारे जादू दिया है
0: जी,
1: इससे कैमरा भी है, बात भी कर लीजिए, सब कर लीजिए, हम लोग कोई फोटो नहीं खींच पाए। लेकिन हाँ ये जरूर हुआ कि हम लोगों ने चाहे नोट पे सही उनका सिग्नेचर जरूर ले लिया।
0: अच्छा अच्छा क्या बात।
1: तो और किसी को बात करने का कोई मौका नहीं था लिटरली, मतलब अगर देखा जाए तो उस दिन चाय वाय जो भी उस समय फ्लाइट में मिलती थी
0: जी,
1: जैसे तैसे सबने किया, लेकिन सबका अट्रैक्शन पॉइंट था वो देवानंद थे। तो ये देवानंद का अट्रैक्शन था, और ऐसे ही सभी में था, लड़कियों में लड़कों में, इवन हमारे जब उस जमाने के बुजुर्गों में भी था कि भाई ऐसा हीरो जिसके लिए सब लोग परेशान है उसको भी एक बार देख लें। तो सबके साथ था, और हम ये चाहते हैं कि अब हम लोग एक और गाना सुने देवानंद का, कोई बढ़िया सा तड़कता भड़कता गाना सुनाओ जैसे CID वगैरह से
0: जी। आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत देवानंद साहब की फिल्म से। सुनते रहिए सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0।

0: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं, तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC नेट, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन्स के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी, उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
3: यू ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
2: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
4: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
5: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
4: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
6: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand, Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
2: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास।

मेरठ द मार्स रिजॉर्ट्स। चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाएं अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ वास्तु कृष्णा, मेरे साथ स्टूडियो में आदरणीय आरपी सिंह जी बैठे हुए हैं और कार्यक्रम है आपका जाना पहचाना, वही पुराना दौर, वही पुराना जमाना जो लौटाए। वो सुना ना बचपन में सर आपने भी, वो कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। बीते हुए दिन तो लौट ही आएंगे जब सुभारती आजाद हिंद रेडियो पर एवरग्रीन जमाना लगाएंगे।

0: एक बात और है कि पहले इतने बढ़िया इक्विपमेंट नहीं थे, बहुत भारी भारी इक्विपमेंट हुआ करते थे
1: जी।
0: अगर देखा जाए तो जमाना हम लोगों ने देखा, उस जमाने में 20-25 किलो का तो रिकॉर्डर होता था, और उस समय अगर देखें तो ट्रेन में शूटिंग करना, वही एक जमाना था जहां पे ट्रेन में शूटिंग शुरू हुई थी। खैर उन वो गाने अलग थे, लेकिन इसको देखा देखी अगर देखा जाए तो दो गाने देवानंद के उस समय, बाद में तो देवानंद ने करीब करीब 7-8 गाने ऐसे थे जो कि कहीं ना कहीं ट्रेन को टच करते थे, लेकिन जो दो गाने थे वो बहुत ही फेमस हुए
1: जी।
0: और उस समय के फेमस रेडियो
1: विविध भारती
0: में, और साथ में रेडियो सीलोन बिना का गीतमाला
1: जी,
0: जिसके कि आज भी लोग दीवाने हैं।
1: तो सर इस रेडियो सिलोंग था या सिलोन था?
0: सिलोन लंका का जो राजधानी है।
1: अच्छा,
0: वहां
1: था,
0: वहां था, से उन्हें और वहां से ही इसकी रिकॉर्डिंग होती थी।
1: अच्छा,
0: तो उसमें भी अगर आप सुने होंगे तो उसमें अमीन साहनी साहब ने बताया था कि देवानंद के दो गाने जो बहुत फेमस हुए ट्रेन में, वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल से शूट हुए थे
1: जी।
0: और अगर देखें तो वो दो गाने थे
1: जी,
0: एक तो है अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा,
1: क्या बात है, बहुत ही प्यारा,
0: और दूसरे अपनी तो हर आह एक तूफान है
1: जी,
0: ऊपर वाला जानकर अनजान है। देवानंद नीचे सीट पे हैं, ऊपर वहीदा रहमान बैठी हुई है,
1: क्या बात है।
0: अगर आप इसमें से कोई एक गाना या ये दोनों गाने सुना सके
1: जी
0: तो बहुत अच्छा होगा।

0: 100 अच्छी चीजें हो जाएं, लेकिन अगर एक चीज खराब हो तो तुम्हारा ध्यान सिर्फ उसी पर जाता है।
1: जो आया है वो जाएगा भी।
2: जिस मनुष्य के लिए सुख और दुख समान अवस्था है, जो भय और क्रोध से मुक्त है, जो स्थिर बुद्धि वाला है ना, वही सिद्ध पुरुष कहलाता है।
0: जब एक जोक पे बार बार हंस नहीं सकते तो एक गम पे बार बार रोते क्यों मेरे दोस्त।
3: सुनिए सुप्रभात, जिंदगी को जीने का एक नया नजरिया, हर सुबह सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर, मेरे यानी वास्तु कृष्णा के साथ।
0: तुम जानते हो इंसानों की सबसे बड़ी गलती क्या है? तुम भगवान में तो मानते हो लेकिन भगवान की एक नहीं मानते।
4: सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ वास्तु कृष्णा और आप सुन रहे हैं सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं आदरणीय आरपी सिंह जी। पुराने जमानों की बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं देव साहब की।
1: देवानंद पैदा तो हुए थे पंजाब में, लेकिन असली बात यह है कि अगर पर्सनल लाइफ की हम बात करें तो स्ट्रगल करने के बाद इनका पहला प्यार सुरैया थी। सो कि हर आदमी जानता है कि सुरैया के साथ इनकी बहुत दिनों तक चीजें, मतलब मोहब्बत परवान चढ़ती रही।
0: जी सर।
1: जब शादी की बात आई तो जैसा कहा जाता है कि 1948 में विद्या के सेट पे ये दोनों लोग मिले थे
0: जी,
1: लेकिन जब शादी की बात आई तो दो धर्म आपस में मिल नहीं पाए। सुरैया मुस्लिम थी और देवानंद हिंदू थे। सुरैया के घर वालों ने उनको रोका। अब ये तो कहो पहला जमाना था
0: जी
1: कि दोनों ही टॉप थे, दोनों कह सकते थे कि तुम्हें क्या मतलब है, हम तो साथ रहेंगे। जो कि आजकल के तो लड़के जो चाहे आजकल तो वो सबसे पहले बोल देता तो अच्छा तुम चुप रहो तुम चुप रहो, हमारी मर्जी है मैं तो कर लूंगा। रोज ही हम लोग पेपरों में पढ़ रहे हैं, रोज ही सब कर रहे हैं, लेकिन दोनों ने अपने पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स की बातों को माना। सुरैया का रिश्ता टूटा और जैसा कहा जाता है कि देवानंद ने सुरैया को एक हीरे की अंगूठी दी थी, और जब ये सब टूटा है तो सुरैया ने वो अंगूठी नदी में फेंक दी।
0: अच्छा।
1: और उसके बाद देवानंद और सुरैया कभी नहीं मिले, किसी सेट पे नहीं मिले।
0: अच्छा।
1: तो ये बहुत ही, मतलब आज ठीक है हो सकता है कुछ लोग कहें यार क्या लेके बैठ गए, लेकिन असल बात ये नहीं है। ये डिटर्मिनेशन की है, ये शादी में सोशल बंधन की है, जो कि हम सब लोग जो भारतीय हैं हम इस रिश्ते को एक जन्म जन्मांतर का साथ मानते हैं। ये उसकी है, आज जैसे नहीं कि मजाक है शादी, आज कर ली कल तोड़ दी, फिर परसों कर ली अगले दिन तोड़ दी, घर वालों की नहीं सुनी, ये सारी बातें हैं। और फिर कल्पना कार्तिकेय के साथ हुई 1954 में, और फिर बहुत ही निजी समारोह में इनकी शादी हुई थी। जैसा कि कहा जाता है और लिखा हुआ है कि बहुत कम लोग आए गए थे। जो बुक उन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी है
0: जी,
1: उसमें सुरैया का भी जिक्र किया है।
0: क्या बात है दोस्तों, यही तो बात है पुराने जमाने की। अगर आपको भी कुछ बताना है देव साहब के बारे में, कोई जिक्र आप भी करना चाहते हैं, कोई किस्सा कोई कहानी आपके पास भी है तो मिलाइए नंबर 9639012111, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। ऑडियो वीडियो मैसेज भी रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। बात कर रहे हैं देवानंद साहब के बारे में, आइए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये खूबसूरत गीत।

0: अच्छे हम अकेले
1: चलें साथ लेने,
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों, मैं हूँ वास्तु कृष्णा और आज हम देवानंद साहब की बात कर रहे हैं और हमारे आज के कार्यक्रम के मेहमान हैं श्री आर पी सिंह जी। सर, देव साहब के बारे में हमने ढेर सारी बातें की है लेकिन आपने बताया कि आपको उनसे मिलने का एक दो बार मौका भी मिला, तो मैं और हमारे श्रोता भी जानना चाहेंगे कि देवानंद साहब से जब आप मिले तो आपने उनसे क्या सवाल किए।
1: देखो कृष्णा, देवानंद बहुत ही जिंदा दिल आदमी थे
0: जी,
1: और हमारे समझ में बहुत कम ऐसे लोग अपनी लाइफ में लोगों को मिलते हैं जो कि बहुत ही मतलब जिसको हर तरह से खुश रहने वाले
0: जी।
1: सबको पता है कि नाम तो एवरग्रीन था ही
0: जी,
1: लेकिन माइंड भी एवरग्रीन था। लास्ट तक अपने मरते मरते समय तक वो अपनी फिल्मों पे काम कर रहे थे। लेकिन एक बार ऐसे ही मजाक मजाक में
0: जी
1: हम लोगों ने उनसे पूछा कि सबसे कठिन आपको क्या लगता है, तो उनका जवाब था कुछ नहीं लगता, लेकिन हाँ ये है कि एक फिल्म में जरूर मुझे याद है कि हम जो हैं वो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था
0: जी।
1: हम लोग एक्टिंग तो कर रहे थे लेकिन गाना मैं नहीं गा रहा था, हमारे आगे हीरोइन भी चल रही थी
0: हाँ।
1: लेकिन मैं गाना नहीं गा रहा था, तो हम लोगों ने पूछा कौन सा ऐसा गाना है
0: हाँ।
1: जबकि मुझे याद था हम लोग अपने स्टूडेंट के टाइम में वो गाने देखे थे
0: जी,
1: तो वो गाना है जो वहां बॉम्बे में समुद्र के किनारे
0: जी
1: वो चल रहे हैं
0: हाँ।
1: आगे हीरोइन चल रही हैं और उसके पीछे जो एक हारमोनियम वाला गाना गा रहा है लेके पहला पहला प्यार।
0: अच्छा अच्छा,
1: अगर अगर ये आप सुना सकते हो तो सुनाओ, बहुत ही फेमस गाना है।
0: जादू नगरी से आया है कोई
1: जादूगर, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर
0: जी, जी।

0: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर का मार्गदर्शन, UGC नेट, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण। अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी, उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
3: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
2: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
4: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
5: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
4: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
6: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio, Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand, Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
2: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।
7: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों, मैं हूँ वास्तु कृष्णा और आज हम देवानंद साहब के बारे में बात कर रहे हैं। सर, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे देव साहब के बारे में, उन्होंने बहुत ही अच्छी फिल्में बनाई और एक और किस्सा मशहूर कि वो लड़कियों के बीच में बहुत ज्यादा फेमस थे, लेकिन बहुत सारी लड़कियों को हीरोइन भी तो उन्होंने बनाया था। तो जरा इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालें कि कौन कौन सी हीरोइनों को उन्होंने लॉन्च किया।
8: कृष्णा, मेरे समझ में तो शायद कोई ही ऐसी हीरोइन थी
7: जी
8: जिसके साथ देव साहब ने काम नहीं किया
7: जी।
8: अगर उस समय की टॉप हीरोइन को लें तो माला सिन्हा
7: जी
8: और मीना कुमारी, वैजंती माला, हर एक के साथ अलग अलग टॉप फिल्मों में काम किया। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता है कि देवन ने अपने करियर में सिर्फ जो पुराने लोग थे उनके साथ काम किया और अपना करियर को आगे बढ़ाया, ऐसा नहीं है
7: जी।
8: देवानंद ने जहां तक मुझे, मैं कह सकता हूं कि कम से कम 7 या 8 हीरोइनों को उन्होंने रिस्क लेकर के अपनी फिल्म में लॉन्च किया
7: जी।
8: मीना कुमारी, वैजंती माला और माला सिन्हा, यही टॉप हीरोइने थी। लेकिन उसके बाद कोई ये नहीं कह सकता कि उन्होंने जो उनके फैंस थे
7: जी,
8: जो लड़कियां उनकी फैंस थी, उनमें से हीरोइन नहीं बनाया। बहुत सी हीरोइने हैं, 7-8 का तो मैं नाम ले सकता हूं
7: जी,
8: जैसे जीना तामान
7: जी,
8: टीना मुनीम, तब्बू, ऋचा शर्मा, नताशा सिन्हा, एकता और अनीता आयुब। उसके बाद अगर देखें तो एक बहुत ही अलग तरीके की एक हीरोइन आई थी जिन्होंने, देवानंद ने अपने फर्स्ट कैरियर में जो डायरेक्टर थे वो एक फिल्म थी प्रेम पुजारी।
7: प्रेम पुजारी,
8: हाँ, जिसमें जायदा को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया
7: जी।
8: पहली उनकी डायरेक्टर फिल्म थी प्रेम पुजारी, में उन्होंने जायदा को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन साथ में वहीदा रहमान भी थी
7: जी।
8: तो प्रेम पुजारी के भी बहुत फेमस गाने हैं
7: जी, जी,
8: और मुझे लगता है कि लिसनर्स को वो पसंद आएंगे
7: जी।
8: वैसे तो जीना तामान ने अगर देखा जाए तो बहुत ही मॉड रोल में
7: जी
8: कई फिल्मों में काम किया
7: जी,
8: जैसे बिल्कुल धड़कड़ धड़ा जिसको कहते हैं धड़ल्ले के साथ
7: जी, जी,
8: मिनी स्कर्ट में वो आई,
7: वो भी उस जमाने में,
8: वो भी उस जमाने में, जबकि लोगों का कहना ये था कि यार तू बच्चा अगर फिल्म देखने जा रहा है, या जब हम लोग पढ़ते थे कि ये फिल्म देखने जा रहा है बिगड़ जाएगा उस समय
7: जी।
8: लेकिन लोग लाए और वो जमाने से और आज के जमाने में बहुत फर्क है
7: जी।
8: लेकिन अब चलो, हम सबसे पहले अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर प्रेम पुजारी का कोई गाना हो जाए।
7: बिल्कुल, तो दोस्तों आइए सुनते हैं यहाँ पर प्रेम पुजारी से ये खूबसूरत गाना।
9: वो प्यार है शोकियों में खोला जाए फूलों का शबाब,
7: साथ ही साथ जीना तामान जी का दम मारो दम,
10: दम मारो दम।
7: सुनते रहिए मेरठ का नंबर 1 सुभारती।

0: भक्ति और सनातन के रंग, सुभारती आजाद हिंद रेडियो के संग। जय हिंद।
1: भवम भवानी सहितम नमामि।
0: वास्तु कृष्णा के संग।

0: ट्रैफिक अपडेट। ट्रैफिक अपडेट सिर्फ सुबह भारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। आप हो कहीं भी, अपनी गाड़ी में या फंस गए हैं कहीं ट्रैफिक में, पूरे मेरठ की सड़कों का हाल चाल सिर्फ सुबह भारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। ट्रैफिक स्पेशल में वास्तु कृष्णा के साथ।
1: सुबह भारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: अगर देखा जाए तो रंगीन फिल्म थी गाइड
1: जी,
0: और गाइड हर मामले में अलग थी
1: जी।
0: वैसे तो जितनी फिल्में देवानंद ने बनाई, चाहे वो तेरे घर के सामने हो, चाहे वो जो भी फिल्में थी, वो कहीं ना कहीं कोई सोशल मुद्दे पे बनी हुई थी
1: जी।
0: लेकिन गाइड एक बिल्कुल डिफरेंट एंगल था समय के हिसाब से, क्योंकि गाइड की जो हीरोइन थी वहीदा रहमान
1: जी,
0: वो एक बहुत बड़े जिसको कहो आर्कियोलॉजिस्ट की या इनकी वाइफ थी
1: जी,
0: उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं था। और जब ये लोग एक साइट पे जाते हैं तो देवानंद को जिम्मा दिया जाता है कि आप मैडम को घुमाओ।
1: ठीक,
0: कुछ ऐसा हुआ कि साथ साथ रहते रहते एक अट्रैक्शन हो गया। अट्रैक्शन में ये भी बिल्कुल वहां भी अगर देखा जाए तो एक सामाजिक दीवार थी, बहुत ही रोमांटिक गाने थे। आज फिर जैसे ये ट्रक पे बैठे हुए हैं,
1: आज फिर जीने,
0: आज फिर
1: की,
0: जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है, बहुत ही रोमांटिक गाने थे। लेकिन अगर देखा जाए तो एक जगह ये भी था कि हमें अपनी सीमाओं को बंद कर रहना है। आज अगर वही फिल्म बनाई जाए तो ये लोग तो ये कहेंगे कि ये तो लेके भाग गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था
1: जी।
0: एक चीज और थी कृष्णा, बड़ी मजेदार, जो कि देवानंद के बारे में मैं बताना चाहूंगा
1: जी,
0: कि देवानंद वैसे तो बहुत ही, जिसको कहो कि सब लोग कहते थे, मैं नहीं कह सकता
1: जी,
0: बहुत ही स्नॉब हीरो थे
1: जी।
0: मतलब अपने नाक नीची नहीं होनी है, अपना रुमाल नहीं खोलना है। लेकिन इन्होंने तीन चार, मुझे दृश्य अभी अभी याद आए
1: जी,
0: कि इन्होंने अजीब हरकतें करी। जैसे
1: जी
0: गाइड में ही एक गाने में इन्होंने वहीदा रहमान की सैंडल उठाई।
1: अच्छा,
0: लेकिन वो सैंडल हाथ में नहीं उठाई।
1: वो लकड़ी के
0: वो सैंडल जो है लकड़ी से उठाई।
1: अच्छा जी,
0: लकड़ी
1: जी
0: से उठा के घूम रहे हैं।
1: हाँ।
0: एक दूसरा सीन अब लो, जीनत अमान को इन्होंने लॉन्च किया
1: जी,
0: हरे रामा हरे कृष्णा में
1: जी,
0: और फिर उसके बाद उनके साथ दूसरी भी फिल्म थी। उस फिल्म में
1: जी
0: इन्होंने जब गाड़ी में से सामान निकाला तो उस समय लोगों ने थोड़ा सा इसको, जो बुड्ढे लोग थे उन्होंने थोड़ा सा इसको इग्नोर किया।
1: अच्छा,
0: क्योंकि वो अंडरगारमेंट उठा करके वो गाना गा रहे हैं।
1: अच्छा अच्छा,
0: पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, उसमें देवानंद उसकी ब्रा और वो ऐसे हाथ,
1: ये शायद ज्वेल थी फिल्म थी,
0: ये ज्वेल थी फिल्म थी।

0: अब उसमें अगर देखें तो ये देवानंद स्टाइल नहीं था।
1: अच्छा,
0: लेकिन एक नए हीरो की, एक चलते हुए हीरो की यही पहचान है कि समय के हिसाब से एक लिमिट तक वो अपने को बदले।
1: जी,
0: तो मैं चाहता हूं कि एक गाइड का जोरदार गाना हो जाए, जैसे बहुत अच्छे अच्छे गाने थे उसमें, डांस पे भी थे जो कि वहीदा रहमान के बड़े अच्छे डांस थे।
1: जी,
0: तो देखो अगर आपके पास हो तो एक चला देना।
1: आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, पुराने जमाने।

0: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA Honors Hindi, BA Honors English, MA Hindi, MA English। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC NET, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन्स के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
3: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करें विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
2: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर। जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
4: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
5: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक ICU एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ECG व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
4: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने, निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।
6: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio, Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand, Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
2: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

0: दोस्तों, ये कार्यक्रम, ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी जरूर बताएगा। आज के इस सुनहरे कार्यक्रम में हमने बात की है देवानंद साहब के बारे में। हमारे आज के गेस्ट, हमारे मेहमान आदरणीय आरपी सिंह जी हैं और बहुत ही रोचक तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी के किस्सों के साथ साथ कैसे वो देव साहब से मिले और क्या पुरानी यादें थी वो सब हमारे साथ में सर ने शेयर की। आपके मन में भी अगर कुछ किस्से कहानियां ऐसे हैं दफन, तो उन्हें निकालिए बाहर और भेज दीजिए मेरे पास 9639012111 पर। और अगले कार्यक्रम में हम किस ऐसी पर्सनालिटी के बारे में बात करें, किस किस्से के बारे में बात करें, वो भी आप बता सकते हैं। चलते चलते सर, गाना तो मैं आपको जरूर सुनाऊंगा, लेकिन कुछ बात आप चलते चलते श्रोताओं से कहना चाहते हैं?
1: देखिए, मैं खाली एक ही चीज कहना चाहता हूं जो कि मेरे भी जीवन का एक निचोड़ है।
0: जी सर,
1: हम लोग कुछ भी नहीं है, हम लोग सब एक सामान्य इंसान हैं।
0: जी
1: ठीक है, आप कुछ कर रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, मैं मीडिया से अपनी रोजी रोटी कमा के अपने बच्चे पाल रहा हूं,
0: जी
1: अपना जीवन बिता रहा हूं। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अगर हम सच में सच्चाई से, और अगर जिसको कहते हैं ना जुझारू तरीके से, अगर हम किसी भी काम को करते हैं, हो सकता है कि शुरू में आपको लगे कि नहीं मुश्किल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो काम जरूर होगा।
0: क्या बात है दोस्तों, चलते चलते जिंदगी का मोटिवेशन सर ने दिया। अगले कार्यक्रम में होगी मुलाकात। सुनते रहिए, जुड़े रहिए सुबह भारतीय आजाद हिंद रेडियो के संग।
1: एक चीज और है कृष्णा
0: जी सर,
1: कि अब हम लोग ये भी दर्शकों को बताएं,
0: जी
1: अरे सॉरी दर्शकों को नहीं, हम लिसनर्स को बताएं, श्रोताओं को बताएं,
0: जी
1: कि आप लोग भी किस हीरो हीरोइन के बारे में जानना चाहते हैं।
0: जी
1: हम लोग कोशिश करेंगे कि अपनी रिसर्च से हम लोग वो निकालें, और साथ में मैं एक कोशिश और करूंगा, जैसा कि आज भी हमने किया है
0: जी,
1: कि मैं आज के किसी एक्टर या एक्ट्रेस से उस हीरो के बारे में दो शब्द कहलवाऊं।
0: जी
1: आज आपने इसके बारे में सुना, आपने बहुत टाइम दिया, क्योंकि आज ये कहा जाता है किसी के पास टाइम नहीं है।
0: जी
1: लेकिन एक और भी है इसमें मजेदार किस्सा, किसी के पास टाइम नहीं है ये तो खाली कहने की बात है, सिगरेट पीने, खैनी खाने, पान खाने, बेकार की गप करने के लिए सबके पास टाइम है। तो हम खाली एक चीज कहेंगे, राष्ट्र सर्वप्रथम है, और हम उन चीजों को सेवन करें जिससे हमारा स्वास्थ्य बढ़िया हो, अच्छा हो, खुश रहें, मस्त रहें, यहां रहें, चाहे जहां रहें।
0: जी
1: जय हिंद।
0: जय हिंद दोस्तों, जुड़े रहिए, सुनते रहिए सुबह भारतीय आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। ट्रैफिक अपडेट सिर्फ सुबह भारतीय आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। आप हो कहीं भी, अपनी गाड़ी में या फंस गए हैं कहीं ट्रैफिक में, पूरे मेरठ की सड़कों का हाल चाल सिर्फ सुबह भारतीय आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर। ट्रैफिक स्पेशल में वास्तु कृष्णा के साथ
2: सुबह भारतीय आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम।

0: जय हिंद दोस्तों, आप सुन रहे हैं मेरठ का नंबर वन सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। आज मैं आपको सुनाता हूँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ओरिजिनल वॉइस, जब उन्होंने टोक्यो से अपने रेडियो पर, जी हाँ दोस्तों, नेताजी का जो रेडियो था उसका नाम उन्होंने रखा था आजाद हिंद रेडियो। उन्हीं के सपने को साकार करने के लिए, उन्हीं के विजन को आगे लेकर बढ़ने के लिए सुभारती विश्वविद्यालय ने अपने रेडियो का नाम रखा है आजाद हिंद रेडियो। हम नेताजी के सपने को साकार करना चाहते हैं, इसीलिए हम इस कार्यक्रम में हमेशा देशभक्ति की और क्रांतिकारियों की बात करते हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने अपने रेडियो के प्रसारण में टोक्यो से क्या बोला।
1: दिस इज सुभाष चंद्र बोस स्पीकिंग टू यू फ्रॉम टोक्यो। कंट्रीमैन एंड फ्रेंड, इन अप्रैल लास्ट यू हर्ड माय वॉइस ओवर अनदर रेडियो इन अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। नाउ आई एम इन टोक्यो एंड आई एम एक्सेप्टिंग द हॉस्पिटैलिटी ऑफ द ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन हियर इन ऑर्डर टू स्पीक टू यू अगेन। सिंस आई स्पोक टू यू लास्ट, नो इम्पोर्टेंट चेंज has taken place in the general war situation.
2: Inqilab Zindabad, Azad Hind Zindabad,
0: Azad Hind Zindabad। जी हाँ, इस वक्त आप सुन रहे हैं आपका अपना सुभारती आजाद हिंद रेडियो, और एक और हिस्सा एक भाषण का सुनाता हूँ आपको। नेताजी की इस आवाज को सुनकर अगर आपके रोंगटे खड़े हो जाएं तो बोलिएगा जय हिंद।
3: जय हिंद,
4: जय हिंद,
3: जय हिंद,
4: जय हिंद।
5: पर आपने हाथ है क्या? हमारे रास्ते में आएगी भूख, प्यार, तकलीफें, विपदें, मौत। कोई नहीं कह सकता है जिन लोग इस जंग में शरीक होंगे उनसे कितने लोग निकलेंगे जिंदा हो। कोई बात नहीं है हम जिंदा रहेंगे या फिर मरेंगे, कोई बात नहीं है। बात कोई सही बात यह है, आम बात यह है, आखिर में हमारी कामयाबी होगी। इन्हों सलाह।
0: ये तालियों की गड़गड़ाहट जो अभी आपने सुनी, उस समय पर क्या माहौल रहा होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद। सुनते रहिए आपका अपना सुभारती आजाद हिंद रेडियो। मैं हूँ आपके साथ वास्तु कृष्णा। जय हिंद।

0: नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ वास्तु कृष्णा और बहुत ही खूबसूरत वक्त है मेरे जीवन का। मैं काफी दिनों से सर का सानिध्य प्राप्त करना चाहता था। हमारे साथ हमारे सुभारती विश्वविद्यालय के फाउंडर महोदय, हमारे परम आदरणीय और न जाने कितने लोगों के जीवन को इंस्पायर करने वाले आदरणीय डॉक्टर अतुल कृष्ण जी हमारे समक्ष बैठे हुए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आजाद हिंद रेडियो के स्टूडियो में।
1: जय हिंद वास्तु कृष्णा, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं बहुत बहुत आपका आभार करता हूँ।
0: लाखों लोग हैं, युवा हैं, जो आपको देखकर इंस्पायर होते हैं। और जब मैं आपसे मिला तो आपकी एनर्जी इस उम्र में भी और जो काम के प्रति जज्बा है, सुबह अर्ली मॉर्निंग से आप लग जाते हैं, जबकि कई युवाओं का ये ख्वाब होता है कि जल्दी से बस पैसा आ जाए और रिटायर हो जाए, हमें कुछ नहीं करना पड़े। ये जज्बा कहाँ से सर आपके भीतर आता है कि आप इतनी मेहनत करते हैं अभी?
1: नहीं, देखिए, ये तो बड़ी सीधी सी बात है कि जो भी आज मैं कर पा रहा हूँ वो संस्कार मेरे माता पिता ने मुझे दिए।
0: जी।
1: और जो आपने कहा कि इस उम्र में भी, तो मेरी तो अभी तो मैं युवा हूँ।
0: जी।
1: तो आदमी जो है, आदमी कितने वर्ष का है इससे कोई युवा या वृद्ध नहीं होता है, उसकी अपनी सोच होती है। तो मेरी सोच युवा है और मैं पूरी तरह से युवा हूँ। और मैं तो ये चाहता हूँ कि जिस दिन तक भी मेरा जीवन है, अंतिम दिन तक,
0: जी
1: कौन जानता है, लेकिन मैं इसी तरीके से सक्रिय कार्य करता हूँ। जो भी मैं, मुझे समाज ने बहुत दिया, मुझे इस देश ने बहुत दिया है,
0: जी
1: जो कुछ भी मैं समाज और देश के लिए कर सकता हूँ,
0: जी
1: वो मैं करता रहूँ और अंतिम क्षण तक और अंतिम पल तक मैं करता रहूँ। तो ये मैं कहूँगा कि एक तरफ तो माता पिता के द्वारा संस्कार दिए हैं कि मुझे कुछ करना है,
0: जी सर,
1: और दूसरी तरफ ये प्रभु की इच्छा है कि जो उन्होंने मुझे इस लायक रखा हुआ है,
0: जी
1: कि मैं कुछ कर पा रहा हूँ।
0: जी, एक तो सुभारती विश्वविद्यालय के रूप में, सुभारती अस्पताल के रूप में आपने मेरठ को और पूरे देश को एक ऐसा तोहफा दिया है जो शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के दोनों के क्षेत्र में बिल्कुल अतुलनीय है और आपके नाम से भी मेल खाता है सर। तो मतलब अभी आपका क्या विजन है सुभारती परिवार को लेकर, आप क्या सोचते हैं सर, अगला पड़ाव क्या है?
1: मेरा तो जैसे आप जानते हैं कि सुभारती शिक्षा का केंद्र है,
0: जी,
1: लेकिन मेरा कहना यह है कि ऐसी शिक्षा बेकार है जिस शिक्षा को प्राप्त करके सेवा की भावना, समर्पण का भाव, संस्कार और राष्ट्र प्रेम जागृत ना हो। तो मैं, मेरा प्रोग्राम यही है, मेरी योजना यही है, मेरा विजन यही है कि ये विश्वविद्यालय आगे बढ़े और शिक्षा, सेवा, संस्कार और राष्ट्रीयता, इन सारे भावों को लेकर आगे बढ़े और अलग अलग नए नए इसके केंद्र स्थापित हों, जिससे कि जो हमारे ये सोच है ये जगह जगह फैले। इसके पास पैसा तो कहीं भी चला जाता है, लेकिन जो गरीब आदमी है वो भी उस सेवा से, चिकित्सीय सेवा से पीछे ना रह जाए, महरूम ना हो जाए, उसको भी सेवा मिले। और हमारे, जहां तक मैं राष्ट्रीयता की बात करता हूँ, कि हमारे युवाओं में ये भाव पैदा होना चाहिए कि राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम, यही हमारा स्लोगन है कि हम कुछ भी करें, हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कुछ भी करें, हमारे मन में ये विचार हमेशा
0: होना ही चाहिए,
1: लगातार होना चाहिए कि राष्ट्र प्रथम सदैव, हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसका राष्ट्र पे क्या सकते हैं।
0: जी,
1: तो ये भाव अगर हम जागृत कर पाए तो यही मेरा सोच है।
0: जी जी,
1: कि हमको आजादी अहिंसा से नहीं मिली, हमको आजादी इंडियन नेशनल आर्मी के कारण मिली। और इस बात को जब तक हमारे युवाओं को नहीं बताया जाएगा तो उनको पता कैसे चलेगा? तो आजाद हिंद रेडियो के मैं सभी जो भी इसके चलाने वाले हैं सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत उनको साधुवाद कहता हूं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और एक बार आजाद हिंद रेडियो के लिए भी मैं कहता हूं जय हिंद आजाद हिंद रेडियो।
0: ये है मेरठ का नंबर 1 सुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM।

0: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC नेट, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉर्पोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।
2: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313। सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हॉर्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
3: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।
4: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले, हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
2: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध, 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
5: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
6: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आई

0: Cetaphim, are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
1: जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ। द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

0: वास्तु कृष्ण के साथ
1: शुभारती आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

0: द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ। जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं, तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।
1: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address: Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand, Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
0: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड, किठोर, जहां पर 24 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड, किठोर, HP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
2: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र, सुभारती हॉस्पिटल, झाजरा, देहरादून। कॉल करे 9760920865।
0: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं, मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आर जे पंकज। बातें करते हैं विश्व पर्यटन दिवस के बारे में, बोले तो वर्ल्ड टूरिज्म डे। विश्व पर्यटन दिवस हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में पर्यटन के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक मूल्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अगर आप घूमना पसंद करते हैं, थोड़ा घुमक्कड़ स्वभाव के हैं, तो आप अपना एक्सपीरियंस या इस दिन के बारे में कुछ जानते हैं हमारे साथ साझा कर सकते हैं, हमसे बातें कर सकते हैं। सोशल हैंडल्स पर आकर हमारे आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM के नाम से हम आपको मिल जाते हैं। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM। राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

हमारी धरोहर हमारा गर्व है। इन दीवारों पर नाम लिखकर या गुटखा थूककर हम इनका नहीं बल्कि अपनी संस्कृति का अपमान करते हैं। ये इमारतें हमारा इतिहास हैं। इन्हें गंदा करके अपना भविष्य धुंधला ना करें। विरासत को सजाएं, बदसूरत ना बनाएं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, एचपी पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।

मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरशे पंकज और आप मुझे सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। बातें आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं विश्व पर्यटन दिवस के इतिहास के बारे में। इस दिन की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी कि UNWTO ने 1980 में की थी। 27 सितंबर की तारीख को इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन 1970 में UNWTO के नियम पारित हुए थे जिन्हें पर्यटन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाझरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

0: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: क्या आप अपने घर में कचरा फेंकते हैं? नहीं ना, तो फिर अपने देश की सड़कों को गंदा क्यों करना? एक प्लास्टिक की थैली या एक लिफाफा कचरा शायद आपके लिए छोटा हो, पर हमारी धरती के लिए ये बोझ है। प्लास्टिक को नो कहें और कचरे को सिर्फ कूड़ेदान में डालें। देश को साफ रखें, देश को स्वस्थ रखें। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरशे पंकज और इस वक्त आप मुझे सुन रहे हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 एफएम पर। जानते हैं आगे विश्व पर्यटन दिवस के महत्व के बारे में। देखिए, पर्यटन सिर्फ सैर सपाटे से कहीं ज्यादा है, ये वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये लाखों लोगों को रोजगार देता है और ये सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने में मदद करता है। इसके कुछ प्रमुख फायदे इस प्रकार से हम समझते हैं, जैसे कि पर्यटन कई देशों के लिए आय का एक बड़ा स्रोत है। इससे होटल, रेस्टोरेंट, परिवहन और हस्तशिल्प जैसे उद्योगों को बढ़ावा मिलता है। जब लोग यात्रा करते हैं तो वो नई संस्कृतियों, परंपराओं और खान पान को समझते हैं। इससे आपसी समझ बढ़ती है और विश्व शांति को बढ़ावा मिलता है। वहीं पर रोजगार सृजन यानी कि पर्यटन क्षेत्र में गाइड, ट्रैवल एजेंट, होटल कर्मचारी और बहुत से अन्य लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। हर साल UNWTO एक विशेष थीम पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसे पर्यटन और ग्रामीण विकास या पर्यटन और हरित निवेश, ताकि पर्यटन के अलग अलग पहलुओं पर जोर दिया जा सके। ये दिन हमें याद दिलाता है कि पर्यटन कैसे शांति, विकास और आपसी सम्मान का एक शक्तिशाली साधन है। सुनते रहिए यूं ही आपके अपने आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM को, मेरे यानी आपके अपने बिंदास आरजे पंकज के साथ।

अपना आपा खो पैना है, रब नू सिद्धे हो पैना है। चुप, जे तू रोई मैं रो पैना है।

और नहीं मौ ना फिर जे लिखिया ही नहीं ते रो ना फिर इश्क नहीं मिलिया शिव नू जानी तू ते मैं कहो ना फिर न...

0: ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੱਜਣਾ ਇੱਕੋ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
1: देशभक्ति सिर्फ नारों में नहीं हमारे कर्मों में होनी चाहिए। सरहद पर लड़ना हर किसी के नसीब में नहीं होता, पर एक अच्छा नागरिक बनना हम सबके हाथ में है। आइए शुरुआत करते हैं अपनी रोजाना की आदतों से, क्योंकि जब हम बदलेंगे तभी तो देश बदलेगा। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं, तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC NET, JRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
0: एडमिशन्स के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।

मैं हूँ आपके साथ आपका अपना बिंदास आरजे पंकज। और चलिए अभी हम करते हैं हमारी आज की अच्छी वाली बात, जो ये कहती है अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो जब तक वो तुम्हारी कहानी ना लिख दे। सीधा सा, सिंपल सा और समझने वाला मतलब है, आपका ये जो संघर्ष है, आपका ये जो स्ट्रगल है, इसको कभी भी रोके ना, इसको हमेशा कंटिन्यू रखें जब तक आपकी कहानी ना लिख जाए, यानी कि जब तक आपको कामयाबी ना मिल जाए, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। सो ये मत सोचिए कभी भी कि हम मेहनत किए जा रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा, और वहीं पर आप डिमोटिवेट हो जाते हैं और अपना मेहनत करना रोक देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखें, अपने संघर्ष को जारी रखें और इंतजार करें जब तक आपकी कामयाबी आपको ना मिल जाए, और मिलेगी जरूर अगर आप अपना संघर्ष जारी रखेंगे तो। चलिए ये तो हुई हमारी अच्छी वाली बात। ऐसी ही अच्छी वाली बात आप भी चाहें तो हमारे साथ साझा कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल सोशल हैंडल्स पर जाकर। फिलहाल सुनते रहिए ऐसे ही आपके अपने रेडियो स्टेशन को, यानी कि आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM को।

0: सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: क्या आप भाषा और साहित्य की दुनिया में चमकना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश ले स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के भाषा विभाग में।
2: यहाँ आपको मिलेंगे भाषा विभाग द्वारा संचालित ये बेहतरीन पाठ्यक्रम: BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स इंग्लिश, MA हिंदी, MA इंग्लिश। यहाँ आपको मिलेगा AI आधारित आधुनिक तकनीक से भाषा सीखने का अनोखा अवसर, अनुभवी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन, UGC NET, GRF तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी, मीडिया, अनुवाद, कॉरपोरेट या शिक्षण, अपने हर करियर गोल को दें एक नई उड़ान।
1: एडमिशन्स के लिए आज ही कॉल करें 9639222290 और 9639222293 पर, या विजिट करें भाषा विभाग स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में।

मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास सार शे पंकज और अभी आपके साथ बना हुआ हूं। अभी मेरे पास रिक्वेस्ट आई हुई है हमारी लिसनर विधि की, जो कह रही है कि सर मुझे तेरे बाजू सॉन्ग सुनना है श्रेया घोषाल की वॉइस में। तो चलिए भाई इनकी रिक्वेस्ट को पूरा करते हैं और इनका गाना प्ले करते हैं।

सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

0: जुकाम, खांसी या बुखार कई दिनों तक रहे तो छोटे बच्चों को निमोनिया हो सकता है। अपने बच्चों के बेहतर इलाज के लिए आज ही संपर्क करें लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, जहां पर 2400 घंटे हमारे बाल रोग विशेषज्ञ आपके बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए उपलब्ध। 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, SP पेट्रोल पंप के सामने। कॉल करें 8194007405।
1: Are you looking for a place from where your voice get a fame? Are you looking for a perfect platform to record your voice? Then why are you worrying a lot? Captain Ram Singh Sound Studio Subharti is here for you. Solution of your problem is under one roof. We provide facilities like dubbing, vocal recording, music composing, mixing and mastering. Visit here and we are giving you guarantee you gonna love it. Address Tathagat Block, 6th floor, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut. For more information, contact 9759303022.
2: यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।
0: लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड किठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ECG, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल किठोर में।

0: आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 24 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।
1: बचपन में उन्होंने हमारा हाथ थामा था, आज वक्त है उनका सहारा बनने का। अपने घर के बुजुर्गों को थोड़ा वक्त और ढेर सारा प्यार दें, क्योंकि उनकी सीख और उनका आशीर्वाद हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरशे पंकज। अच्छा भाई, स्मार्टफोन की बात की जाए तो ये सभी के पास है आजकल। 97% लोगों के पास स्मार्टफोन है आजकल, है ना। और हमारे मोबाइल फोन में एक रिचार्ज का ही खर्चा नहीं होता, एक दूसरा खर्चा भी होता है, वो होता है इसे चार्ज करने का। अब आप ये सोच सकते हैं कि छोटा सा मोबाइल है, कितना ही इसमें खर्चा होता होगा चार्ज करने में। भाई कितना भी होता हो, होता तो है। आपको थोड़ा डिटेल से मैं समझाना चाहूंगा, उसके बाद आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि आपका जो मोबाइल फोन है वो कितने रुपए की बिजली आपकी खर्च कर रहा होगा। सो आप मान लीजिए, अगर आपके मोबाइल फोन की बैटरी 4000 mAh की है और उसका जो वोल्टेज है वो 3.85 है, और आपके यहाँ लाइट की कीमत जो है वो आप चलिए 8 रुपए प्रति यूनिट मान लीजिए, तो आपकी बैटरी को फुल चार्ज होने में 1.5 रुपए की बिजली खर्च होगी। ये एक दिन का खर्चा है। और अगर आप एक महीने का कैलकुलेट करें तो समथिंग 45 रुपीज बैठेंगे जो आपके मोबाइल फोन को चार्ज करने में लग रहे हैं। अब आप ये सोचिए कि एक घर में 4 से 5 मोबाइल भी होते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं, और वो रोजाना चार्ज होते हैं, एंड हर मोबाइल फोन की बैटरी लगभग 4000 mAh तो होती ही है। इनफैक्ट 5000 mAh तक भी होती है, और कुछ की इससे ज्यादा भी होती है, 6500 mAh भी होती है। अब आप कैलकुलेट कीजिए कितने सारे मोबाइल फोन घर में होते हैं तो कितनी लाइट हमारी उसमें जा रही है। सोचिए, अब शायद हो सकता है कि आप रोजाना मोबाइल में ज्यादा व्यस्त ना रहें और बैटरी बचाने का सोचें, क्योंकि आपके घर में काफी सारे मोबाइल फोन हैं और सब चार्ज होंगे हर दिन, तो देखिए कितना एक्सपेंस होगा। तो ये बात हुई मोबाइल फोन की बैटरी को लेकर कि उसको चार्ज करने में कितना खर्चा आता है। फिलहाल अभी क्या करते हैं, इसको जानने के बाद सुनते हैं अपकमिंग गाना आपके अपने आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM पर।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख कान नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में।
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड, 24 घंटे कार्यरत पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

0: सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।
1: आपकी रगों में बहता खून किसी के लिए जीवन दान बन सकता है, इसीलिए रक्तदान कीजिए। एक मुस्कुराहट बनिए, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। डोनेट ब्लड, सेव लाइफ। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM आप सुन रहे हैं, मैं हूं आपके साथ आपका अपना पेंदास आरशे पंकज। अच्छा, हम जब भी यहां पर आते हैं तो आपसे ढेर सारी बातें कर ही लेते हैं, लेकिन अगर आप हमसे बातें करना चाहें, हमें कोई सजेशन देना चाहें, हम तक कोई अपनी बात पहुंचाना चाहें या अपने किसी फेवरेट ट्रैक को सुनना चाहें तो आप ये कैसे कर सकते हैं? ये कुछ ही को पता है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको अब मैं बता ही देता हूँ। देखिए, आपको क्या करना होता है कि आपको कनेक्ट होना होता है हमसे हमारे ऑफिशियल सोशल हैंडल्स पर, आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM के नाम से। हम फेसबुक यानी कि मेटा पर भी हैं, और हाँ, इसके साथ ही साथ हम इंस्टाग्राम पर भी हैं। वहां पर भी आप हमें सर्च कर सकते हैं आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM के नाम से। और हमारे स्टूडियो का भी नंबर होता है, जो कि होता है 9639012111। इस पर भी आप कॉल या मैसेज करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, अपनी कोई रिक्वेस्ट, अपनी कोई बात हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम।

लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर, अत्याधुनिक नर्सरी, ईसीजी, इको, कार्डियोग्राफी, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे हो या अल्ट्रासाउंड, न्यूनेटल केयर यूनिट और बच्चों के लिए विशेष ऑपरेशन थिएटर, 2400 घंटे पैथोलॉजी लैब्स। लोकप्रिय हॉस्पिटल की ठोर में आज ही आकर मिले। हमारे अनुभवी डॉक्टर और विशेषज्ञ आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 2400 घंटे तैयार। अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक जो आपको सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करें। लोकप्रिय हॉस्पिटल गढ़ रोड की ठोर।

संगीत का नया ठिकाना, हर पल एक नया फसाना। आपका अपना रेडियो स्टेशन, आपकी अपनी पसंद। सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने बिंदास आरजे पंकज के साथ।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करे 9760920865।

जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।

का आज दिन है। सो कैसा गुजरा आपका संडे? क्योंकि हमारी तो इस वक्त में आपसे मुलाकात होती है, तो इसी वक्त में हम आपसे पूछ सकते हैं, आप ज़रूर बता सकते हैं। और कहीं पर ट्रैफिक में है या मौसम की कोई ख़ास अपडेट है आपके पास, वो भी आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। एंड बारिश के आसार अभी भी बताए जा रहे हैं, अब होगी या नहीं ये थोड़े ही समय में पता चल जाएगा। बाकी कुछ कहना है, कुछ बताना है तो ज़रूर कहिए, बताइए। कहने बताने के लिए आप सोशल हैंडल्स पर भी आ सकते हैं और

सन्नाटा पसर जाता है उस परिवार में जहाँ किसी को कैंसर हो जाए। वीरानी लगती है ये दुनिया जिस परिवार में किसी को कैंसर हो जाए। अब कैंसर से डरिए नहीं, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, कैंसर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, ऑल टाइप ऑफ लेटेस्ट एंड एडवांस रेडिएशन थेरेपी, ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैंसर सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी। नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

सिर्फ कागज का टुकड़ा भविष्य नहीं लिखता, आपके हाथों का हुनर लिखता है। कोई काम छोटा नहीं होता अगर उसे दिल से किया जाए। अपनी कला को पहचानिए, उसे तराशिए। हुनर है तो कद्र है। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर आप। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स 24 घंटे, डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे, मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात

पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

एक कमेंट, सिर्फ एक कमेंट किसी की पूरी हिम्मत तोड़ सकता है। स्क्रीन के पीछे छिपकर नफरत फैलाना आसान है, पर याद रखिए, आपके शब्द किसी का घाव बन सकते हैं। सोचिए फिर टाइप कीजिए। इंटरनेट को सुरक्षित बनाएं, नफरत नहीं प्यार फैलाएं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

वो रेड लाइट सिर्फ 60 सेकंड की थी, लेकिन आपकी एक सेकंड की जल्दबाजी किसी का पूरी उम्र का इंतजार बन सकती है। हेलमेट और सीट बेल्ट बोझ नहीं, आपकी सुरक्षा कवच है। जिंदगी आपकी है, इसे सुरक्षित रखिए। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख कान नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किशोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स, 24 घंटे डायलिसिस की सुविधा, 24 घंटे मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920865।

सुभारती कैंसर हॉस्पिटल, यहाँ आपको सिर्फ उपचार नहीं मिलता, आपको मिलता है प्यार, समर्थन और सबसे जरूरी उम्मीद। हम जानते हैं कि हर मरीज की जिंदगी की कहानी अलग होती है और हम हर कहानी को जीतने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ हर कदम पर हम आपको उम्मीद और जीवन की नई राह दिखाते हैं। कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक इलाज, सुभारती कैंसर हॉस्पिटल। टू नो मोर कॉल नाउ 9639010313।

ये सिर्फ एक बूंद नहीं है, ये कल की प्यास है। अगर आज हम इसे नहीं रोक पाए तो कल मांगने से भी नहीं मिलेगा। पानी बचाएं, भविष्य सजाएं। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

यूं ही मारते रहे दम तो जिंदगी हो जाएगी बेदम। बचाना चाहते हो किसी का जीवन तो संपर्क करे विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त सुभारती नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र सुभारती हॉस्पिटल झाजरा देहरादून। कॉल करें 9760920086।

एक गलत क्लिक और आपकी मेहनत की कमाई गायब। सतर्क रहिए, अपना OTP और पासवर्ड किसी को ना दें। आपकी समझदारी ही आपकी सुरक्षा है। डिजिटल बनो पर सावधानी के साथ। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे

0: सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
1: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। HP पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।

जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58, परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।

हर फॉरवर्ड मैसेज सच नहीं होता। बिन सोचे समझे कोई भी खबर शेयर ना करें, ये किसी की मुश्किल बढ़ा सकता है। पहले जांचिए फिर मानिए। अफवाहों पर लगाम लगा के एक अच्छे भारतीय नागरिक बने, इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।

द मार्स रिजॉर्ट्स, चाहे आपकी शादी हो, फैमिली आउटिंग हो या एक खास डिनर गेट टुगेदर हो, द मार्स रिजॉर्ट्स में बनाए अपनी जिंदगी का हर पल रॉयल। किटी पार्टीज हो या इंटीमेट गैदरिंग, हमारे ग्रैंड बैंकेट हॉल्स, फाइन डाइनिंग और शाही हॉस्पिटैलिटी से हर इवेंट हो जाएगा यादगार। द मार्स रिजॉर्ट्स, एक रॉयल एक्सपीरियंस नियर सुभारती, हरिद्वार बाईपास रोड, मेरठ।

0: स्क्रीन से नजरें हटाइए, अपनों से नजरें मिलाइए। दिन में कम से कम एक घंटा अपने मोबाइल को डू नॉट डिस्टर्ब पर रखें और असली बातें करें। डिजिटल दुनिया से थोड़ा ब्रेक असली सुकून के लिए। कनेक्ट विद पीपल नॉट वाईफाई। इसी संदेश के साथ सुनते रहिए आजाद हिंद रेडियो 90.0 FM, आपके अपने दोस्त पंकज के साथ।
1: 1, 2, 3, 4.

जब जीवन में अंधेरे घेर लेते हैं तब हर किसी को एक उम्मीद की किरण की तलाश होती है। सुभारती अस्पताल में हम सिर्फ इलाज नहीं करते, हम आपकी उम्मीदों को बचाते हैं। यहाँ हर दर्द का इलाज है, हर समस्या का समाधान है, क्योंकि हम जानते हैं उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। सुभारती अस्पताल, जहाँ हर मरीज को मिलती है जिंदगी की नई उम्मीद। 24 घंटे हम हैं आपकी सेवा में। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आज ही आइए छत्रपति शिवाजी सुभारती हॉस्पिटल, NH 58 परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।

0: लोकप्रिय अस्पताल सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मिलने वाली सेवाओं के कारण भी लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे मेडिसिन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जरी, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, गुर्दा और मूत्र रोग विशेषज्ञ, दांत और मुंह के रोग विशेषज्ञ, आँख, कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, हृदय और छाती रोग विशेषज्ञ, थायराइड और मधुमेह रोग विशेषज्ञ, ब्रेन और स्पाइन रोग विशेषज्ञ। लोकप्रिय अस्पताल किठोर में
1: यहाँ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के ट्रॉमा एवं इमरजेंसी सुविधाएं, जैसे नॉर्मल डिलीवरी एवं ऑपरेशन डिलीवरी, आधुनिक आईसीयू एवं वेंटिलेटर की सुविधाएं, मॉडल ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक नर्सरी, ईसीजी व इको कार्डियोग्राफी, जनरल वार्ड, सेमी प्राइवेट और प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड 24 घंटे कार्यरत, पैथोलॉजी लैब्स 24 घंटे, डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे, मेडिकल स्टोर जैसे अनेकों सुविधाओं के साथ हम आपको 24/7 की इमरजेंसी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।
0: अपनी बीमारियों और समस्याओं से निजात पाने के लिए मिले 120 बेड वाले लोकप्रिय अस्पताल सुपर मल्टी स्पेशलिटी किठोर के विशेषज्ञों से और पाएं सारी बीमारियों से निजात। एचपी पेट्रोल पंप के सामने निकट नहर गढ़ रोड किठोर। संपर्क कीजिए 8194007405।